मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 मई 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56:45 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री

0: जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में देशगान।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अंजलि जैन के स्वर में ये भक्तिमय गीत।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का आलेख है नैतिक साहस। संकलन एवं वाचन स्वर है जयमाला के।
1: मनुष्य के जीवन में अनेक गुणों का महत्व है, परंतु साहस ऐसा गुण है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। साहस केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और सत्य के साथ खड़े रहने की क्षमता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में साहस होता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के होते हुए भी सही कार्य करना है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य डर, असफलता या आलोचना के कारण पीछे हटने लगता है। ऐसे समय में साहस ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने साहस का परिचय दिया, वही समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बने। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों ने अपने साहस और देशभक्ति से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहसी व्यक्ति कभी कठिनाइयों से नहीं घबराता। साहस केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। सत्य बोलने का साहस, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस, असफलता के बाद पुनः प्रयास करने का साहस, ये सभी जीवन को सफल बनाते हैं। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में ईमानदारी बनाए रखना, एक कर्मचारी के लिए अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना तथा समाज के लिए सही बात का समर्थन करना भी साहस के ही रूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी साहस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब उसके भीतर अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। यह संदेश मनुष्य को निर्भय होकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। साहस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। साहसी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है।

0: और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में साहस का विकास करना चाहिए। साहस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह प्रकाश है जो अंधकारमय परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है। जीवन में सफलता केवल ज्ञान, धन या शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस व्यक्ति को संघर्षों से लड़ने, कठिनाइयों को स्वीकार करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन रास्तों को चुनता है, तब उसका साहस ही उसे गिरकर फिर उठना सिखाता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी का साहस अवश्य रहा है। चाहे वह वैज्ञानिक खोज हो, सामाजिक परिवर्तन हो या राष्ट्र की स्वतंत्रता, हर सफलता साहस की कहानी कहती है। आज के समय में नैतिक साहस की सबसे अधिक आवश्यकता है। समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय, असत्य और भेदभाव जैसी समस्याएं तभी समाप्त हो सकती हैं जब लोग साहस पूर्वक सही बात का समर्थन करें। नैतिक साहस वह है जिसमें व्यक्ति सत्य, न्याय और धर्म के लिए खड़ा होता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। प्रकृति भी हमें साहस का संदेश देती है। छोटी सी चींटी बार बार गिरकर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करती है। नदी बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंततः साहस जीवन का अमूल्य गुण है। यह मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुँचने की शक्ति देता है। यदि व्यक्ति के पास साहस है तो वह हर कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: नैतिक साहस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। संकलन एवं वाचन स्वर थे जयमाला की।

मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस का गायन भाग 79। मुख्य गायन स्वर हैं वाणी जयराम और उत्तरा केलकर के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है गर्मी में सब्जियों का प्रबंधन।
1: किसान मित्रों, गर्मियों के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, करेला, खीरा, कद्दू, इन सब का उचित प्रबंधन बंपर पैदावार और अधिक मुनाफा लेने के लिए बेहद जरूरी है। इस वर्ग की फसलें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छी बढ़ती हैं, लेकिन 40 डिग्री से अधिक तापमान होने पर इनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। तेज गर्मी के दौरान फसलों में प्रत्येक 6 से 7 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर अवश्य करनी चाहिए। खेतों में पानी को जमा न होने दें, क्योंकि जल भराव से जड़ गलने की समस्या बढ़ जाती है। पानी की बचत और नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई विधि और मल्चिंग का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। आधुनिक तकनीक में इसे पानी की बचत के लिए भी अपनाना जरूरी है। रोपाई के बाद पौधों की जड़ों के पास वर्मिंग कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। फसल के विकास के दौरान रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, यूरिया की आधी मात्रा को 2 बार में खड़ी फसल में ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बेहतर वृद्धि के लिए प्रति माह प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत का उपयोग जरूर करना चाहिए। किसान मित्रों, इस समय लगने वाले कीट और रोग का नियंत्रण भी करना बेहद आवश्यक है, जिसमें लाल कद्दू भृंग जो इन फसलों का मुख्य कीट है, इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय पौधे पर राख और केरोसिन के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी कद्दू वर्गीय फसलों को खराब होने से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप या मक्खी का जाल लगाना चाहिए, क्योंकि फल मक्खी इन सब्जियों को बहुत नुकसान करती है। इसी प्रकार चूर्णील असिता पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो घुलनशील गंधक या कार्बेंडाजिम का उचित छिड़काव से नियंत्रण में आते हैं। नीम के तेल 2 मिलीलीटर

0: प्रति लीटर पानी का नियमित अंतराल पर छिड़काव करने से रस चूसने वाले कीड़े का प्रकोप कम होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई 45 दिन बाद जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार अधिक गर्मी के कारण मादा फूलों की संख्या कम हो जाती है, इसे संतुलित करने के लिए PGR अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अवश्य करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के जैविक प्रबंधन में रसायनों के बिना कीटों रोगों और पोषण का नियंत्रण उत्तम है। इसमें मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बनी रहती और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पौधे के अच्छे विकास और फल उत्पादन के लिए केवल प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग उत्तम होता है। प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत को सिंचाई के पानी के साथ 10-15 दिन में खेत में देना चाहिए। बुआई के समय प्रति एकड़ 2 क्विंटल घन जीवामृत या अच्छी सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 3% पंचगव्य घोल का पत्तियों पर छिड़काव अवश्य करना चाहिए। सूखी घास या धान के पुआल से क्यारियों को ढके ताकि मिट्टी की नमी बची रहे और केचुए सक्रिय रहे। गर्मी के दिनों में रस चूसने वाले कीट और फल मक्खी का प्रकोप सबसे अधिक होता है। इसका जैविक नियंत्रण फलों को सड़ने से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फोरमन ट्रैप या तुलसी के पत्ते से बने घरेलू जाल लगाने चाहिए। सुबह के समय जब पत्तियों पर ओस हो तब उन पर लकड़ी की छानी हुई राख, इसमें कीट पत्तियां नहीं खा पाती। रस चूसक कीटों को आकर्षित करने के लिए और नष्ट करने के लिए खेत में 15 से 20 येलो और ब्लू स्टिकी टेप लगाएं। भारी कीट प्रकोप होने पर घर पर बनाए गए 10 पर्णी अर्क का 3% की दर से छिड़काव उत्तम होता है।
1: गर्मी में सब्जियों का प्रबंधन विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

दिल्ली केंद्र से आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा। इसमें आप स्मिता मोकाशी का गायन सुनेंगी और रात 9:30 पर अखिल भारतीय युवा भारती युवा पत्रिका का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से ही किया जाएगा। आज सुबह 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बजे बातों बातों में कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम रायपुर केंद्र से करेंगे। हमारे केंद्र से कुछ ही देर में सुबह 7 बजे लोक संगीत की कार्यक्रम गूंजे जंगल में हम आज आपको सुनवाएंगे कुछ सरगुजिहा लोकगीत। सुबह 7 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत हम पेश करेंगे। सुबह 7:15 पर जन संपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का समय होगा। सुबह 7:30 पर बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन हम लेकर आएंगे। सुबह 9:15 पर आज सुबह 10 बजे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने का प्रसारण समय होगा। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दिन के 12 बजे मिश्रित गीत संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम सबरंग का प्रसारण समय होगा। अबीदा परवीन की आवाज में पेश करेंगे हम चंद कव्वालियां दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर और कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण समय होगा शाम 6:05 पर।

0: बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज का समय होगा दिन के 1:40 पर। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम लेकर आएंगे रात 8:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद लेंगे आप शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर लोक संगीत के कार्यक्रम गोधुली का समय होगा। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा पेश करेंगे हम शाम 7:05 पर और रात 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा। ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:20 पर और साथ ही होगी किसान वाड़ी शाम 7:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम् अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5-दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापार नेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षा अस्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल LPG इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् मन्त्रालयस्य

0: संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000+ क्विण्टल् परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-2 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। नीचे प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधारण दास और साथी के स्वर में इस सरगुजिहा साजिन कर्मा गीत से।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं कुछ सरगुजिहा लोकगीत। इसी क्रम में आइए सुनते हैं शोभा बाई और साथी के स्वर में ये देवी भजन।

कार्यक्रम गूंजे जंगल की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अधीन दास मानिकपुरी और साथी के स्वर में ये पेंडरिया गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में जगजीत सिंह की लिखी ये गज़ल।

अल्फाज कम पड़ जाएं तो सुर बोलने लगते हैं, दिल की खामोशियों के राज खोलने लगते हैं। जब जगजीत और चित्रा की आवाज़ साथ हो तो गज़ल के हर मिसरे में जज्बात डोलने लगते हैं। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में एक और शानदार गज़ल।

श्रोताओं, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर आवाज में सजी इस खूबसूरत गजल के साथ आज के इस सुगम संगीत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूं प्रियंका। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचार MCB से। दुर्गम पहाड़ियों, कच्चे रास्तों और सीमित संसाधनों के बीच बसे ग्राम पंचायत खोहरा के आश्रित ग्राम ढाब में विकास की नई धारा बह रही है। कभी पानी की एक एक बूंद के लिए जूझने वाला यह गांव अब जल जीवन मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर और जागरूक ग्राम के रूप में पहचान बना रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना ने ढाब के ग्रामीणों के जीवन में ऐसा बदलाव लाया है जिसने गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। पहले इस गांव के लोगों की दिनचर्या पानी की तलाश से शुरू होती थी। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कई किलोमीटर दूर नदी, कुएं और हैंड पंपों तक पहुंचकर पानी लाने को मजबूर थे। पहाड़ी रास्तों में भारी बर्तन उठाकर पानी लाना ग्रामीणों के लिए रोज की कठिन परीक्षा थी। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जब पानी के सीमित स्रोत सूखने लगते थे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जल

जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में विकसित किए गए जल स्रोत, सुदृढ़ पाइपलाइन नेटवर्क और 10,000 लीटर क्षमता वाली पानी टंकी ने ढाब को नई पहचान दी है। मोटर पंप के माध्यम से नियमित जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिससे अब गांव के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल आसानी से पहुंच रहा है। जहां पहले पानी लाने में घंटों लग जाते थे, वहीं अब घर के पास ही पानी उपलब्ध होने से लोगों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार है शैलेंद्र और संगीत निर्देशन है शलिल चौधरी का।

समाचार एमसीबी से। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नया रायपुर अटल नगर के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चिरमिरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2026-28 व्यवसाय मैकेनिक डीजल वेल्डर विद्युतकार कोपा फीटर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून 2026 रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल वेबसाइट cgiti.admission.nic.in के माध्यम से ही

किए जा सकेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए जिले में संचालित आईटीआई चिरमिरी के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर द्वारा यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। प्रवेश से संबंधित सभी दिशा निर्देश और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। प्रवेश से संबंधित आवश्यक जानकारी या सहायता के लिए आवेदन निकटतम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है जान इसार अख्तर की और संगीतबद्ध किया है जयदेव ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार अंबिकापुर से। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संवर्गों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यह सूची 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में तैयार की गई है। जारी आदेश के अनुसार रेडियोग्राफर प्रशिक्षण प्राप्त अंधकक्ष सहायक नेत्र सहायक अधिकारी तथा लैब टेक्नोलॉजिस्ट संवर्ग के MPHW ग्रेड 1 कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। विभाग ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण सेवा अनुभव एवं पंजीयन संबंधी अर्हताएं अनिवार्य होंगी। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। समाचार बलरामपुर से। जिला शिक्षा अधिकारी सहसचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों की पूर्ति हेतु संविदा भर्ती की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई से 9 जून 2026 तक संयुक्त जिला कार्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है सलिल चौधरी का।

समाचार अंबिकापुर से। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक ने बताया कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट cgiti.admission.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 28 मई को विकासखंड अंबिकापुर के खलीबा के शिविर स्थल में शिविर लगेगा, जिसमें 28 ग्राम पंचायतों सरगवा, सकालो, किशननगर, कुल्हाड़ी, पलसेड़ी आदि में शिकायतों संबंधी आवेदन दिए जा सकेंगे। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत, पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्द रचना है मजरूह की और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

समाचार अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी वित्तकर्ष योजना अंतर्गत सत्र 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित प्रवेश परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नया रायपुर के निर्देशानुसार प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में यह परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जानी थी। उन्होंने संबंधित विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से अपील की है कि फिलहाल परीक्षा से संबंधित आवेदन जमा ना करें। परीक्षा की नई तिथि एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत पृथक से सूचना जारी की जाएगी। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजकुमार फिल्म का ये गीत। गीतकार है शैलेंद्र और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

0: इसी गीत के साथ जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि

कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और

0: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders...
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit and we look forward to welcoming the President of Myanmar.
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तरह बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से

0: सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून।

0: Asked oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: निगर रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय, ओरल कैंसर विशेषज्ञ, बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने का तात्पर्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुस्त और स्थिर रहना है। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें उन दिनचर्याओं का पालन करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन कुछ आदतें होती हैं कि जिससे स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इन गलत प्रभावों के कारण हम कई बार कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और शुरुआती तौर पर इन बीमारियों का पता लगे तो हम इसका बेहतर उपचार करवा सकते हैं और इन्हीं बीमारियों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं भारत की तो यहाँ युवा जो है काफ़ी नशे की गिरफ्त में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, लेकिन उस नशे के आदि होने के बाद नशे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और ये नशा ही है जो हमारे युवाओं को भटकाता भी है। तो श्रोताओं, 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, विश्व स्तर पर मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। और तंबाकू जो हमारे भारत में कई गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है, इसी के बारे में 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं और तंबाकू का हमारे जीवन में कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रश्मि राय जी को, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ के आसपास के सारे केंद्रों में हम इस बारे में बात कर पाएँ कि टोबैको कितना हानिकारक हो सकता है, तंबाकू कितना हानिकारक हो सकता है हमारे शरीर के लिए और मुँह के कैंसर के लिए, तो एक वो नोन कॉज है जी। तो जितना ही उसके बारे में बात करेंगे उतना ही हम उसको समझ पाएंगे और इस तरह से हम अवेयरनेस जितना बढ़ाएंगे हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं तंबाकू के दुष्प्रभावों से।
0: जी जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर रश्मि जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, तो इस दिन का क्या महत्व है और खासकर हम देखें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में?
1: जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो अवेयरनेस के लिए है, ये अवेयरनेस हर तरह के लेवल पे पहुँचे, हर जगह पे। जिस तरह से तंबाकू का सेवन बहुत प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे फॉर्म्स में हो तरीके से सेवन किया जा सकता है, बीड़ी और बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जो कॉमनली यहाँ तो बीड़ी का सेवन ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य रूप से यूज़ करने वाला जो तत्व जिस फॉर्म में करते हैं वो है गुटखा या गुड़ाखू। सुबह शाम दांत में जैसे टूथपेस्ट किया जाता है वैसे इसका यूज़ होता है।

0: है। और एक मिथ है, एक भ्रांति है कि ये तंबाकू नहीं है और इससे हमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इससे नहीं होते हैं। ये हमारे मोस्ट कॉमनली जो जब हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तब इस तरह की चीज़ें जब हम उनको बोलते हैं कि आप और किस फॉर्म में खाते हैं तो वो कभी भी गुड़ाकू का नाम नहीं लेते। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो गुटखा है, गुड़ाकू है, ये सब तंबाकू के ही प्रकार हैं। तंबाकू इट्सेल्फ उसमें इतने कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसामिन होता है, बेंजीनाल्डिहाइड है, इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड से बड़े नाम्स हैं, उसी तरह से वो हमारे शरीर के कणों को ख़राब करते हैं। और तंबाकू से जुड़े कम 20 से ज़्यादा कैंसर में तंबाकू का रोल है। और बहुत सारी और बीमारियां जैसे कि सांस लेने में जो तकलीफ़ वाली, जो हमारी फेफड़े की बीमारियां होती हैं, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस होते हैं, ये भी तंबाकू द्वारा होता है, जो कि हम जनरली नहीं सोच पाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, जो नो टोबैको डे का पर्पस है, कि हम इस बारे में अवेयर कराएं और इस चीज़ को अपनी युवा से दूर रखें।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। तो डॉक्टर रश्मि जी, जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसमें ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी हो जाती है, तो वो कौन से जो है प्राइमरी सिम्टम्स है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
0: कई बार क्या होता है कि गुटखा और तंबाकू वो गाल में रखते हैं साइड में, तो वहाँ पे सफ़ेद पैच या जबान में भी सफ़ेद पैच या लाल पैचेस जैसे बनते हैं, मतलब एक छाला जैसा बनेगा जो सतह में बहुत खुरदुरा कलर, रेड कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, सफ़ेद कलर हो सकता है, तो हम लोग उसको ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो ये इनमें इस तरह के जो छाले होते हैं, और कोई गांठ है आपके गले में, गांठ है आपकी आवाज़ में, कोई बदलाव आ रहा है, तो ये जो और जैसे अचानक से आपकी हड्डी मसूड़े जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि घरों में लोग सोचते हैं कि ये हमारी दांत की तकलीफ़ है, ना कि कोई बीमारी है। तो हमारा जो बेसिकली सभी को कम से कम 3 महीने में एक बार जाके कोई डेंटल क्लिनिक हो गया या आसपास के कोई भी ENT सर्जन को जाके अगर मुंह में इस तरह की कोई छाला गांठ है तो दिखाना चाहिए। फिर निगलने में तकलीफ़ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, सब तंबाकू द्वारा हुए कैंसर, जैसे आपकी स्वर पेटी में अगर कैंसर हो जाता है तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जैसे गांठें हो गई, अल्सर हो गया, जो लंबे समय से उसको इग्नोर ना करें तो बेहतर रहता है।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो और तंबाकू के कारणों की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसके मुँह से संबंधित किन किन स्थानों पर कैंसर होने की संभावनाएँ होती हैं?
0: देखिए, मुंह में जनरली 2 तरीके से तंबाकू का असर होता है। एक तो वो आपका पूरे मुंह में जो उसका रस रहता है, उसमें केमिकल होता है, पूरे मुंह को अफेक्ट करते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा जिस जगह पे रहता है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा भी होता है, तो जनरली होठ के पीछे रखने की आदत होती है, गालों में पीछे दबाने की आदत होती है और वो लगा के सो जाते हैं, तो वो एरिया तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा मसूड़ों में हो सकता है, जबान में हो सकता है, जबान के नीचे सतह में हो सकता है, आपके तालू पे हो सकता है, फिर इस और इवन जबान के पीछे के एरिया में, जो कि कई बार दिखाई नहीं देता आपको, वो तकलीफ़ देगा, दर्द होगा, आवाज़ में थोड़ा सा लगेगा कि मोटी हो गई है, तो ये जबान का पीछे का एरिया होता है, तो और उस वजह से कई बार गले में गांठें होती हैं, तो ये एरियाज मेनली जो है कैंसर से ग्रसित होते हैं, जो अगर मुंह का कैंसर हम सिर्फ देखें तो।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, आपने बताया कि जो छाले होते हैं उनसे जो है मुंह के छाले जो हो जाते हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल छाले भी होते हैं जो मुंह में अक्सर होते रहते हैं, तो एक नॉर्मल माउथ अल्सर और कैंसरस अल्सर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक छोटे अल्सर को देख के हम डर भी सकते हैं, लेकिन कोई छाला जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा है और उससे आसपास की जो सतह है वो थोड़ी खुरदुरी, मोटी हो गई है, और वो जगह आजू बाजू लाल है और उभर जाता है, और बीच में छाला जो है वो गड्ढे जैसा, आपको क्रेटर जैसा दिख रहा है, तो ये सारे ना छाले जो होते हैं उनको हमको दिखाना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी छाला है उसे हम इवेल्युएट कराएं, उसी में भलाई होती है। कई बार ये कैंसर का प्री कैंसर कंडीशंस भी होते हैं, तो अगर हम उसको उस लेवल पे ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, और हम उनको फॉलोअप पे कुछ दवाइयाँ देके ठीक भी कर सकते हैं।
1: जी। तो डॉक्टर रश्मि जी, अभी जो वर्ल्ड टोबैको डे के विषय में हमने तंबाकू से संबंधित जानकारी दी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के जो समय में तंबाकू का सेवन जो है काफ़ी बढ़ गया है और इस तरह की समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो कार्यक्रम में हम

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राजी से, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं, और बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो डॉक्टर रश्मि जी, ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो जब किसी मरीज को ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है, इसके लिए कौन कौन से जो है आधुनिक जांचें जो अभी हमको जो है अवश्य रूप से जो है करवानी चाहिए और अभी के समय में वो उपलब्ध हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लक्षण है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कि एग्जामिनेशन। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करवानी है। जब पहला स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम अपनी आंखों से पहले समझते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है। ये क्यों समझना ज़रूरी है? मान लीजिए मुंह में ना, जैसे हड्डी के पास की कोई जगह है, तो हम अगर उसका कुछ उसको समझना चाहते हैं कि इसका फैलाव कैसा है, तो हम हड्डी के लिए सीटी स्कैन बेटर होता है। और अगर हम जबान को देखें तो वो मसल का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एमआरआई बेटर होता है। तो इसीलिए पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, पहले समझिए कि हमें कौन सा स्कैन कराना है। स्कैन का काम है पहले ये समझना कि ये, क्योंकि ये कैंसर क्या है कि वो लोकल एरिया में भी फैलता है और शरीर में भी फैलता है। तो पहला स्टेप होगा कि हम पहले ये समझें कि इसका फैलाव कैसा है, लोकल एरिया में कितना फैला है। तो उसके लिए अगर बोन के पास है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। फिर है ये कण की बीमारी, सेल में चेंजेस आते हैं। तो जब तक हम इसको प्रूफ ना कर लें, तो वो हम कर पाते हैं, हम वहाँ से एक सैम्पल टिश्यू लेते हैं जिसे बायोप्सी की प्रक्रिया कहते हैं, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार की है। मुंह में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। ये तो मुँह का कैंसर जो आप तम्बाकू से रिलेटेड है वो तो होता ही है, साथ में हमारी जो थूक की ग्रंथि और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी कैंसर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा एक बायोप्सी जब आता है वो हमको बताता है कि इसको हमको ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है इमेजिंग, और दूसरा है बायोप्सी। तो सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी जो रिक्वायर्ड है। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो पेट सीटी करके, होल बॉडी पेट सीटी होता है, या दोबारा बीमारी हुई है, उन सब केसेस में पेट सीटी का योगदान बहुत है। वो हमें बीमारी के फैलाव को समझने में बेटर तरीके से हेल्प करता है।
0: तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम मुंह के हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसे घर में रह के स्वयं ही कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने मुंह के हेल्थ को एग्जामिन कर सकते हैं घर पे रहते हुए?
1: ये बहुत ही ज़रूरी है, जो क्योंकि हम हमेशा अस्पताल के करीब तो नहीं होते, तो और आप अपने शरीर से बेहतर कोई दूसरा आदमी हमें नहीं पहचान सकता। तो हमें सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लाइट ए वाला एरिया चाहिए, एक मिरर चाहिए। और आपको या तो कई हमारे पास टंग ब्लेड्स होते हैं, या तो आप नॉर्मली आप फिंगर से भी कर सकते हैं। आप अच्छे से हाथ धोइए, आईने के अंदर आपके होंठ के पीछे का एरिया, सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो होंठ के पीछे का एरिया, गालों का एरिया और मसूड़ों को, जबान के नीचे, जबान के ऊपर, तालू, इन सब चीज़ों को हमको प्रॉपर लाइट में और मिरर के सामने देखना है। हमें क्या देखना है? कोई भी लाल सफ़ेद छाला, कोई भी दांत अचानक से हिल रहा है, कोई ऐसी जड़ों और उसके आजू बाजू सूजन है जो पहले नहीं था, और ये जो चीज़ है अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़रूरी करके अपने आप को अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए।
0: जी जी, डॉक्टर रश्मि जी, एक जो सबसे बड़ी भ्रांति हम देखते हैं कि कई लोगों को कैंसर की संभावना देखी जाती है, छाले होते हैं, तो उन्हें बायोप्सी के लिए बोला जाता है तो लोग बायोप्सी से बचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बायोप्सी के बाद कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
1: जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये भ्रांति है, तो इसमें सच्चाई तथ्य नहीं है।
0: जी
1: देखिए, अब एक होता है कि कोई भी चीज़ को तथ्य मानने के लिए उसका पीछे एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। हम यहाँ पे हेयर से में रहते हैं, उसने कहा और मैंने सुना,
0: जी जी,
1: है ना। तो जब हम इस तरह की सोच में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें डर लगता है, उस डर को हमें कोई बोल दे कि हाँ तुम ये नहीं कराओगे, क्योंकि कोई भी आपके शरीर का कुछ भी कट

0: करता है, आपको दर्द देता है
1: जी।
0: तो आपसे अगर हम बोलें कि हम एक सैंपल देने जा रहे हैं, तो पहले तो आप उस प्रोसीजर से डर रहे हो, फिर आपको कोई बोल देता है कि हाँ इससे तुम्हारा कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये आपके उस डर को हेल्प करता है कि मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूँ। तो ये एक होता है डिनायल जो चीज़ है, उसमें हम उसका हेल्प लेते हैं। कभी हुआ कि 100 में से जो है एक पेशेंट आए थे, उनको हमने बायोप्सी किया, क्योंकि बीमारी अपने आप ही बढ़ने के फेज में चल रही है, और बायोप्सी ली और उसके बाद वो बढ़ गया
1: जी।
0: अब ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब भी बायोप्सी की जाएगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। किसी और से बात किया, उसको भी यही बताया, इस तरह से मास में ये बात फैल जाती है। हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारी दुविधा ये है, जब तक कर्ण को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट देना गलत होगा। तो बेहतर है कि हम बायोप्सी से डरे ना, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए।
1: जी डॉक्टर रश्मि जी, अब पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, तो इसके कितने स्टेजेस होते हैं और किन किन स्टेजेस में कितने जो है रिकवरी और बचने के चांस हो सकते हैं, और इनके लिए कौन कौन से अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध हैं?
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जब डायग्नोसिस मिलता है कि हमें कैंसर है, तो सबसे पहले तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कैंसर को माना जाता है कि ये आपका एंड ऑफ लाइफ का स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह के कैंसर में अगर हम जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है तो हम अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम अच्छे से चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरे खुद के इतने पेशेंट हैं जो 10 से ज़्यादा साल जी चुके हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें इलाज कराना है। अब इसके जो स्टेजेस होते हैं वो, अब मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, हम जजैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है 3 और 4, मेनली चार स्टेजेस में इस बीमारी को क्लासीफाई किया गया। क्योंकि मुंह का कैंसर, मुंह में जो हमारे सारे मेन जैसे हड्डी और स्किन वगैरह सब पास में है, तो कोई अगर थोड़ा भी लेट होता है तो हम स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं
1: जी।
0: जो एक्चुअली स्टेजेस में डिफाइन करने का मतलब ये रहता है कि बीमारी जो है हम उसको कैसे ट्रीट, मतलब ट्रीट करने के बाद दोबारा होने की क्षमता, ये जो होता है। तो वो साइज के हिसाब से हम लोग जनरली मानते हैं। अगर छोटी बीमारी है, less than 2 cm है, तो हम स्टेज 1 में मानते हैं, और उसको हम सिर्फ सर्जरी करके, मतलब हम जिन जो बीमारी हमें दिख रही है उसके आसपास का 1 cm भाग हम निकालते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने निकाला है उसको हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं। तो स्टेजिंग जो बेसिकली होती है वो हमारी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे होती है। अब मान लीजिए कई बार जो स्टेज 1 लग रहा है वो हमारे बेस्ड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट स्टेज 2 भी हो जाता है, तो वो केसेस में कभी कभी हमको मेन सर्जरी से साथ साथ एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली रेडिएशन करते हैं। उसके बाद 3-4 जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, दोनों ही कंडीशन, मतलब जैसे जो लेटेस्ट स्टेजेस होते हैं उसमें सर्जरी प्लस रेडिएशन का प्रावधान है, और जब तक हम ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक हम बीमारी से आगे नहीं निकल सकते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, और स्टेज 4 में भी अगर आपकी बीमारी डिटेक्ट हो रही है तो भी 50-60% लोग उसमें ठीक होते हैं। तो हमें ये सोचना है हम उस 50-60 के लिए हैं जिन्हें ट्रीटमेंट पूरा अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: जी जी जी। और डॉक्टर रश्मि जी, किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका विपरीत प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की जो इकोनॉमिकली और सोशली जो कंडीशन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ये बहुत ही एक्चुअली होलिस्टिक वे में अगर हम सोचें तो ये एक आदमी को कैंसर होता है जो एक मोस्टली वो ब्रेड अर्नर रहता है अपने परिवार का, दूसरा आदमी उसे लेके आता है। कई बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है कि मोस्टली मैंने देखा है कि परिवार बहुत आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन होता क्या है वो भी अपना परिवार अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। तो भले ही एक आदमी को कैंसर हुआ है वो तो काम नहीं कर पा रहा है 3-4 महीने के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक आदमी दूसरा भी है जो अपना काम छोड़ के आ रहा है
1: जी।
0: तो ये 2 फैमिली एक तरह से अफेक्ट हो रही है। हमारे पास सुविधा है, सरकार ने बहुत अच्छी आयुष्मान योजना इस तरह की सुविधाएं दी हुई है जिससे कि हम मदद कर पाते हैं, और बहुत सारे फंड्स भी होते हैं, बड़े कुछ अस्पतालों में फ़ंड की अवेलेबिलिटी भी रहती है। जैसे हमारे अरुण कुरकुरे फंड है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, अगर हम उन योजनाओं का हेल्प लें तो हमें खर्चा वहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन जनरली एक मोटा मोटी 12,000 से 15,000 रुपये का खर्च एक आदमी को लगता है जब हम जांच कराने जाते हैं, प्लस आना जाना, और ये 3 महीने का जो समय रहता है, सर्जरी हुई है, रेडिएशन हुआ है, 1.5 महीने के करीब रेडिएशन चलता है, तो आप काम छोड़ के जब बैठे हो तो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो हम कहते हैं कि वो

0: बढ़ती जाती है, काम नहीं हो रहा है प्लस खर्चा हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि है ना, इसीलिए हमें तंबाकू से दूर रहना है। ये एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल है अगर हम तंबाकू से दूर रहें। भले ही कुछ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तंबाकू हम नहीं खाते थे लेकिन हमें हो गया, लेकिन वो परसेंटेज कम है। तंबाकू अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो तंबाकू आपको, आप पहले जीवन भर तंबाकू पे खर्च करते हो, फिर उसकी इलाज के लिए खर्च करते हो, आपने जितना कमाया रहता है आप अपने ऊपर खर्च करके चले जाते हो। तो जो डिपेंडेंट फैमिली है उसके पास कुछ नहीं बचता है।
1: और डॉक्टर रश्मि जी, कई ऐसे भी हमने देखा है व्यक्ति होते हैं जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, और चूंकि उनकी हैबिट हो जाती है तो उसे छोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा में इनको जो है एडिक्शन से मुक्त करा सके?
0: चिकित्सा में एक्चुअली टोबैको सीजेशन एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि सरकार चला रही है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं। और ये अगर किसी में इच्छा शक्ति आ गई है तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं टोबैको सीजेशन क्लिनिक्स, ये मोस्टली हर सरकारी अस्पताल में आपको, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ आपको गाइडेड वे में सिखाया जाता है, जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के अलावा आपको कब, आपका डिपेंडिंग कि आपको कितनी आदत है, पहले वो असेस किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट फिर हमें आपको क्या दवाई की आवश्यकता है, या आप सिर्फ ट्रेनिंग से, मतलब आपके विचारों की ट्रेनिंग से, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग से क्या हम इसको कम कर सकते हैं, ये असेसमेंट उस क्लिनिक में होता है। जिन केसेस में हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, आप भी चाह रहे हो, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी इतनी है, उन केसेस में कभी कभी निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं, बट ये ऑफ द लेबल नहीं लेना है, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनको नहीं लेना है। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जाते हैं टोबैको सीजेशन के, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कई लोगों को स्वयं अपने क्लिनिक में बैठ के काउंसलिंग करके हमने टोबैको की जो आदत है उससे मुक्ति दिलाई है। तो हमें इन योजनाओं का हेल्प लेना चाहिए, और उसके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम मान लीजिए क्लिनिक तक नहीं जाते हैं तो नेशनल क्विट लाइन नंबर बोलते हैं, टोबैको क्विट लाइन नंबर है 1800112356। तो वो एक नंबर है जिस पे आप खुद फ़ोन करके उनसे आप ले सकते हैं। प्लस आजकल जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोबाइल में भी आपको ऐप्स मिल गए हैं जो कि रिवॉर्ड और इस तरह की चीज़ें, छोटे गेमिंग फॉर्म जैसा रहता है, अगर आप उनका यूज़ करें तो आपको इसमें मदद हो सकती है।
1: जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
0: मेरा आप सभी श्रोताओं से सिर्फ यही निवेदन है कि तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसकी लत आपको जीवन में सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकती, उसके दुष्प्रभाव आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, आप मेंटली उसके गुलाम एक तो हो जाते हैं, तो आपका जो डिपेंडेंसी है वो आपको आपके 100% परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करता। हमारी जो यंग जनता है जिसका, जो हम देश निर्माण में हेल्प कर सकती है, वो फंस जाती है तंबाकू के इस जाल में, फिर हम बीमार पड़ते हैं, जो हमारा प्रोडक्टिव ईयर है वो हम अपने इलाज में बिता देते हैं, हम जो अपने परिवार के ग्रोथ और अपने स्वयं के ग्रोथ को जो टाइम देना चाहिए, या अपने जो भी आपका के जो पैसे हैं, आप जो भी कमा रहे हो, वो इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मिलके एक दूसरे की मदद करके इससे हम दूर होने की कोशिश करें, और जहाँ भी ज़रूरत हो, इतने सारे सेंटर्स है, सरकार भी रेडी है हेल्प करने के लिए, आप लोग आइए। और अगर आप किसी नशे की आदत में है तो उसको छोड़ा जा सकता है, बस एक विल पावर चाहिए।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और श्रोताओं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज डॉक्टर रश्मि रायल जी ने जो भी बातें बताई हैं इनका अनुसरण करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर्स की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हों और वो तंबाकू या कोई भी नशीले पदार्थों का एडिक्शन हो, वो आज ही तंबाकू छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तंबाकू से होने वाली बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह होती है। और श्रोताओं, डॉक्टर सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राय जी से, जिन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे और साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, उनके लक्षण, इलाज के बारे में बातें बताई। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आ पाएं और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें

0: अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय, ओरल कैंसर विशेषज्ञ, बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमा शंकर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्रीष्म लहर भी अनेक स्थानों पर चल रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि मानसून के करीब 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देने की संभावना है। श्रोताओं, ग्रीष्म लहर और मानसून जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री वाणी। डॉक्टर गायत्री मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर गायत्री, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार
1: मैडम। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस समय छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में ग्रीष्म लहर चल रही है, तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए आसान भाषा में कि ये जो ग्रीष्म लहर है वो किन स्थितियों में बनती है, चलती है, और किसी स्थान पर कितना तापमान होना चाहिए जब ग्रीष्म लहर बनने की स्थितियां पैदा होती हैं?
2: कोई भी स्थान पे अधिकतम तापमान अगर 45 से ऊपर है
1: जी,
2: अथवा 40 डिग्री से ऊपर होने के बाद
1: जी,
2: सामान्य से अगर 4.5 डिग्री से अधिक है
1: जी,
2: तब ग्रीष्म लहर का स्थिति हम डिक्लेयर करते हैं
1: जी। इसमें जैसे जो है वो आप बताते हैं, पूर्वानुमान देते हैं मौसम विभाग का, हर रोज मिलता है मीडिया को, तो वो पूर्वानुमान किस आधार पर आप देते हैं कि हाँ भाई इन इन स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी जाती है?
2: अभी ये पूर्वानुमान जो है
1: जी,
2: ऑब्जर्वेशंस के साथ न्यूमेरिकल मॉडल्स में इनपुट देके हमको एक पूर्वानुमान आता है कि अभी आगामी दिनों में तापमान जो है सामान्य से अधिक होने वाले है और कितना अधिक होने वाला है। जब भी हम 2 दिन से ज्यादा अगर तापमान जो है 45 से ज्यादा नहीं है तो 40 डिग्री से अधिक होके सामान्य से भी 4.5 डिग्री से अधिक है
1: जी,
2: तब हम ये स्टेशन को हीट वेव डिक्लेयर करते हैं
1: जी। जैसे मौसम विभाग हम देखते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है, तो ये जो अलर्ट्स होते हैं इनका आधार क्या होता है और ये तीनों अलर्ट्स के बीच में क्या अंतर है, क्या परिस्थितियां होती हैं जब येलो को या फिर ऑरेंज को या फिर रेड अलर्ट को जारी किया जाता है?
2: कोई भी मौसम का फिनोमिना हो, ग्रीष्म लहर हो या मेघ गर्जन का एक्टिविटी हो या बाढ़ का स्थिति पे हो, कुछ भी स्थिति पे भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर से येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करता है
1: जी।
2: येलो अलर्ट का मतलब ये होता है कि निगरानी रखे, मतलब जागरूक रहे
1: जी।
2: इसका मतलब है आपका आसपास एरिया में ये आने का चांसेस है, ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का फिनोमिना हो सकता है। अभी ग्रीष्म लहर की बात किया तो आपका जिलों में अगर येलो अलर्ट जारी किया इसका मतलब होता है 1-2 स्थानों पर आपको तापमान जो है सामान्य से अधिक होने का संभावना है
1: जी।
2: यदि ऑरेंज अलर्ट जारी किया मतलब चेतावनी ऑलरेडी जारी कर चुका है तो कोई भी कार्यवाही लेने के लिए आप तैयार रहिए, इसका मतलब ऑरेंज अलर्ट का वो होता है। जब रेड अलर्ट जारी करता है इसका मतलब होता है कि बहुत सतर्क रहे और कार्यवाही तुरंत कराए।
1: ये कार्रवाई से आपका आशय क्या है कि मतलब कार्रवाई क्या करें?
2: अभी ये अलर्ट जो है वो किस फिनोमिना के लिए हमने दिया गया है इसका ऊपर है। अभी ग्रीष्म लहर है, ग्रीष्म लहर के अलग अलग ये होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 12 बजे से 4 बजे हम बोलते हैं कि

0: बाहर ना निकले। अगर रेड अलर्ट जारी किया है आपको 100% ये फॉलो करना ये होता है। अदरवाइज
1: अच्छा।
0: अगर मेघ गर्जन का एक्टिविटी और लाइटनिंग का एक्टिविटी दिया आपको इंडोर्स जाना पड़ता है, नहीं है तो खुला मैदान पर है तो उकड़ू बैठना पड़ता है। अदरवाइज फ्लड कंडीशन है, भारी वर्षा का चेतावनी है, रेड अलर्ट है, तो आपको थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाना होता है। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमिना के लिए आपको अलग अलग कार्यवाही लेना पड़ता है।
1: जी मैडम, जो ग्रीष्म लहर जो चलती है या जिसे हम आम भाषा में लू भी कहते हैं, तो इस दौरान लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आमतौर पर, और साथ ही प्रशासन को भी कभी कभी आप कहती हैं कि ये उपाय या इंतजाम या व्यवस्था की जाए, ये इसके बारे में बताएं।
0: सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्रीष्म लहर का चेतावनी इश्यू करता है, येलो अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो,
1: जी,
0: जितना हो सके 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, और काफी ज्यादा पानी या तरल पदार्थ जो है वो लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे।
1: जी।
0: इसके अलावा चेतावनी जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर हम

0: कंपनी इश्यू करता है, येलो अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो,
1: जी,
0: जितना हो सके 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, और काफ़ी ज़्यादा पानी या तरल पदार्थ जो है वो लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। इसके अलावा चेतावनी जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर हम जारी करते हैं, ये राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, ये सारा स्टेक होल्डर्स को हम जारी करते हैं। जैसा ही हम जारी करते हैं, सूचना मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एडवाइजरीज जारी करते जाते हैं, एंड ये एडवाइजरीज के साथ भी कुछ एक्शंस, जैसा सभी कॉमन प्लेसेस में पीने के पानी के व्यवस्था करना या क्लोज्ड शेल्टर्स करना, अभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन शेड डालना, ये सब ऑलरेडी प्रशासन जो है हमारा चेतावनी का आधार पर करते जाता है।
1: मैडम, ये देखने आता है कि जैसे अप्रैल, मई, जून, ये सब जो है वो आमतौर पर गर्मी के महीने होते हैं, भीषण गर्मी का दौर रहता है, लेकिन बीच बीच में एकदम से मौसम बदलता है, मेघ गर्जन की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, हल्की बारिश भी होती है, इसकी क्या वजह होती है?
0: ये मार्च अप्रैल मई का सीज़न जो है, ये सीज़न को हम प्री मानसून सीज़न कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये हमारा प्रदेश में मानसून होता है जून से लेकर सितंबर तक, और ये प्री मानसून सीज़न में जब भी उत्तर पश्चिमी और के साइड से ड्राई विंड्स जो है, शुष्क हवा जो आता है, और दक्षिण पूर्वी का ओर से नमी युक्त हवा जो बे ऑफ बंगाल से आता है, ये दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से ये मेघ गर्जन का एक्टिविटी पूरा प्रदेश में होता है। ये छत्तीसगढ़ में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कॉमन फिनोमेना है ये सीजन में होना।
1: अब गर्मी की बातें काफी हो गई, अब मानसून की बात करते हैं, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। तो भारत में यदि हम मानसून की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है, तो कितनी तरह के मानसून का प्रभाव हमारे देश भारत में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा मानसून प्रभावी होता है और क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
0: भारत में मुख्यतः दो प्रकार के मानसून होते हैं
1: जी,
0: एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से लेकर सितंबर तक होती है, और दूसरा मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मुख्य रूप से पश्चिमी का और मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत को ज़्यादातर वर्षा देती है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो है मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक ये दक्षिण पूर्वी स्टेट से, जैसा आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु पांडिचेरी तक, ये पूरा रीजन में ज़्यादातर वर्षा देती है।
1: अच्छा।
0: छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80% का वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून में मिलती है।
1: जी, एक बात और है मैडम कि हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि हम मानसून तो हमेशा सुनते हैं कि मानसून आ गया, इसके बनने की क्या स्थितियाँ होती हैं और आगे बढ़ने की भी क्या स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि कभी हम सुनते हैं कि मानसून ने दस्तक देगी लेकिन वो अटक गया है, मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, तो मानसून कैसे बनता है, उसका आगमन जब होता है कैसे होता है और फिर वो आगे बढ़ता है तो कैसी स्थितियां बनती है, थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नॉर्मल तौर पर पूरा भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल में एंट्री करती है
1: जी।
0: एंट्री का नॉर्मल डेट है, सामान्य तिथि है 1 जून है। जैसा ही 1 जून में केरल का ऊपर ऑनसेट होती है, लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा भारत कवर कर लेती है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर संभाग में इसका एंट्री लगभग जून 12 का आसपास होते हैं, वो भी सामान्य तिथि है। ये सामान्य तिथि से अंतर ग्लोबल कंडीशंस का ऊपर भी डिपेंड करते हैं, एंड इस बार अगर मानसून की बात करें तो भारत में अभी केरल में भी मानसून ऑनसेट डिक्लेयर करने के लिए आपको विंड का दिशा जो है वो साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिमी का ओर होना, नमी का ये देखना, एंड एक क्राइटेरिया होता है कि स्टेशंस, इतना नंबर ऑफ स्टेशंस में इससे ज्यादा बारिश हुआ, कंटिन्यूअस 5 दिन हुआ, तो इसका मध्य तिथि जो है वो ऑनसेट डिक्लेयर करता है। इसका अलावा सोलर रेडिएशन भी हम देखते हैं, ऐसा कुछ कुछ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं ये डिक्लेयर करने के लिए। जैसे ही मानसून का ऑनसेट होता है केरल में, उसके बाद आसपास स्टेशंस को देखते हुए इसका प्रोग्रेस हम धीरे धीरे मानसून का नॉर्दर्न लिमिट करके बोलते हैं। जैसा हमने बोला कि पूरा भारत कवर करने में लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा।
1: अच्छा, इस साल मानसून के कब तक दस्तक देने की संभावना है?
0: अभी जैसा बोला मैंने कि मॉनसून का ऑनसेट जो है सामान्य तिथि जो केरला का ऊपर 1 जून है, बट आज का स्थिति में देखा है तो आगामी 2 से 3 दिन तक लक्षद्वीप एरिया तक पहुंचने की तो संभावना है।

0: और उसके पश्चात ही हम बोल पाएंगे कि केरला के आने के पश्चात इसका प्रोग्रेशन और वर्षा का गतिविधि देखकर ही छत्तीसगढ़ के ऊपर कब तक आने की चांसेस है वो हम बता पाएंगे।
1: जी, एक बात और है मैडम कि इस वर्ष की यदि बात करें वर्ष 2026 की, तो कहा जा रहा है कि मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है, और इसकी वजह जो है वो सुपर अल नीनो इफेक्ट जो प्रभाव है उसको इसका कारण बताया जा रहा है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि अल नीनो जो प्रभाव है या इफेक्ट है वो क्या होता है, और अल नीनो तथा सुपर अल नीनो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है।
0: सबसे पहले एल नीनो क्या है वो डिस्कस करते हैं। एल नीनो जो है एक एटमॉस्फियर एंड ओशन का, ये दोनों का संबंधित एक पैटर्न है। इसका मेन क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में, पूर्वी और मध्य क्षेत्र में अगर समुद्र का सतह टेम्परेचर जो है वो सामान्य से अधिक रहा, यूजुअली ये फिनोमिना जो है 2 साल से लेके 7 साल में एक बार आने की संभावना होता है।
1: अच्छा।
0: जब भी वहाँ तापमान जो है सामान्य से अधिक रहते हैं, पूरा ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है वो सब में आपको प्रभाव पड़ने की चांसेस है, जिसमें हमारा मॉनसून भी, वो भी मुख्य रूप से हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी इफेक्ट होती है।
1: जी।
0: और इस साल हमारा पूर्वानुमान है, अभी ये एल नीनो जो है न्यूट्रल कंडीशन में है, एनसो कंडीशन न्यूट्रल में है, बट भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि लगभग जुलाई और अगस्त मिड मॉनसून तक एल नीनो कंडीशंस बनने की चांस है, जिसका वजह से इस बार पूरा मॉनसून का भारत देश में सामान्य से कम रहने की चांस है, वो भी लगभग लॉन्ग टर्म एवरेज, दीर्घकालिक जो मॉनसून रेनफॉल होता है वो मॉनसून रेनफॉल का लगभग 92% होने की चांस है, जो बिलो नॉर्मल है।
1: जी, एक बात और है, जैसे आपने कहा कि एल नीनो के बारे में तो आपने बताया, लेकिन एल नीनो सुपर एल नीनो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है।
0: सुपर एल नीनो जो है कोई साइंटिफिकली प्रूवन टर्म नहीं है।
1: ओके।
0: और आमतौर पर ऐसा इंटेंसिटी, मतलब जितना तीव्रता से एल नीनो है उसके लिए आमतौर से ये यूज करते जा रहे हैं, लेकिन कोई साइंटिफिकली प्रूवन शब्द ये नहीं है। अभी साइंटिफिकली देखा है तो एल नीनो ही एक शब्द है जो हम बात करते हैं।
1: यदि हम पिछले वर्षों की बात करें तो भारत में एल नीनो का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कब कब देखने को मिला है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं क्या आपके पास में।
0: भारत देश में लगभग 1950 से लेके 2025 तक अगर देखा है तो लगभग 16 इवेंट्स हुआ है एल नीनो का, जिसमें 7 इवेंट्स है जहां एल नीनो में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का रेनफॉल में कमी देखने के लिए मिले थे। वन टू वन कोरिलेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का रेनफॉल में कमी आने की संभावना है। जैसा मैंने बताया 16 इवेंट्स में 7 इवेंट्स जैसा है जहां कम है, वो भी पूरा भारत में कम होने की तो संभावना एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अभी लेटेस्ट इवेंट देखा है तो आपको 2016 में भी एक इवेंट आए थे लिनो इवेंट, तब कुछ क्षेत्र में मानसून का रेनफॉल सामान्य रहा, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसा उत्तर और उत्तर पश्चिमी का भारत में सामान्य से काफी कम रहा।
1: एक आखिरी सवाल के समय के साथ साथ हमने देखा है हाल के वर्षों में जो मौसम विभाग है उन्होंने लोगों को सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए, उन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए मीडिया के अलावा भी जो आधुनिक संचार के जो साधन हैं SMS के माध्यम से या इसका भी जो है उसने जो है वो उपयोग करना शुरू किया है, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कई बार SMS आता है कि नहीं अलर्ट रहें और पर्टिकुलर रीजन को फोकस करके आप वहां पर देते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कोई भी चेतावनी है सबसे इम्पॉर्टेंट सारा स्टेक होल्डर्स को, जैसा मैंने बताया राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, यह सबको पहुंचने के पश्चात एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल करके एक ऐप होता है जिसमें हमने स्टेट अथॉरिटीज को इश्यू करने के पश्चात वो लोग लोकेशन बेस्ड पे आपका सिम प्रोवाइडर्स को, जैसा हमारा BSNL होता है, एयरटेल होता है, जियो होता है, वो सिम प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करके आपका एरिया में ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट आपको पुश करते हैं, जिसका वजह से आपका मोबाइल में वो अलर्ट आते हैं। इसका अलावा गवर्नमेंट का 2 इम्पॉर्टेंट ऐप्स है जो किसान भाई लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दामिनी, ये दामिनी ऐप हमको जानकारी देती है कि आपके आसपास क्षेत्र में कहाँ मेघ गर्जन का एक्टिविटी हो रहे, कहाँ वज्रपात हो रहे हैं। अभी हमारा द्वारा ये कह जाता है कि आपको अगले 24 घंटों में आपका क्षेत्र में सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। हम पूरा 24 घंटा काम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड करने

0: से हमको अगले 1-2 घंटे में आपका यहाँ अगर कोई वज्रपात हो इसका आपको जानकारी जो है वो ऐप से मिल जाती है। इसके अलावा मेघदूत करके एक ऐप जो है वो सिर्फ कृषि संबंधी जानकारी के लिए बना हुआ है जो हमारा किसान भाई लोग के लिए काफी यूजफुल होगा। इसके अलावा मौसम ऐप जो है आप लोकेशन इसमें एनेबल करने से आपका जहां लोकेशन है वो लोकेशन पर आपको कितना तापमान है कौन सा चेतावनी जारी किया है ये सब आपको मिल जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री वाणी जो मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक हैं, उनके साथ हमारी ये बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में, इसमें आपने सुना ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: कार्यक्रम बातों बातों में का अनुप्रसारण हम अभी रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सभी का बातों और गीतों के लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन में। कार्यक्रम के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी प्रियंका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म खुद्दार से

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का। साथियों आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन मार्तंड प्रकाशित हुआ था और यहीं से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम सफर। आपको बता दें कि समाचार पत्र के प्रकाशक और संपादक जुगल किशोर सुकृत जी थे जो कि कानपुर के रहने वाले एक वकील थे। साथियों पत्रकारिता सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं बल्कि समाज का आईना है जो सच को आवाज देती है, जनता की भावनाओं को शब्द देती है और हर उस मुद्दे को सामने लाती है जो हमारे जीवन से जुड़ा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म अफलातून से गायक कलाकार हैं ललित सेन, श्वेता शेट्टी और साथी गीतकार हैं आनंद बख्शी।

साथियों, हम बातें कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पर। हिंदी पत्रकारिता ने समय समय पर देश को जागरूक किया, समाज को नई दिशा दी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज डिजिटल दौर में समाचारों की दुनिया बहुत तेज हो गई है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता वही है जो निष्पक्ष हो, संवेदनशील हो और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हो। तो आइए, हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर हम उन सभी पत्रकारों, लेखकों और समाचार कर्मियों को दिल से नमन करें जो हर परिस्थिति में सच्चाई को हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। और अब समय है एक खूबसूरत गीत का, तो आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, अपनी रेडियो साथी प्रियंका के साथ। साथियों, जिंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब शरीर स्वस्थ हो और मन उम्मीदों से भरा हो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो धीरे धीरे इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चुनौती देने लगती हैं। ऐसी ही एक गंभीर बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया जाता है। साथियों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क और नसों की सुरक्षा पर ही हमला करने लगती है। इससे शरीर में कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत, धुंधला दिखाई देना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन साथियों, सही इलाज, सकारात्मक सोच और परिवार के सहयोग से इस बीमारी के साथ भी एक बेहतर और सामान्य जीवन जिया जा सकता है। इस दिवस का उद्देश्य केवल बीमारी के बारे में बताना नहीं बल्कि उन लोगों का हौसला बढ़ाना भी है जो हर दिन मुस्कुराते हुए इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो आइए आज हम सब भी एक वादा करें कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और समाज में जागरूकता व संवेदनशीलता फैलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अभिजीत की आवाज़ में। फिल्म है कृष्णा।

हर रसोई की शान, हर स्वाद की पहचान और हर सब्जी का सबसे प्यारा साथी आलू। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आलू का स्वाद लोगों के दिलों तक न पहुंचता हो। इसी खास और महत्वपूर्ण फसल के महत्व को पहचान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। आलू केवल स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि ये ऊर्जा और पोषण का भी अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। साथियों, आलू दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, जो खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका में भी अहम भूमिका निभाता है। कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली ये फसल लाखों किसानों की मेहनत और उम्मीदों से जुड़ी हुई है। तो आइए आज के दिन हम किसानों के योगदान को सम्मान दें और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझें। और सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में कूली नंबर वन फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का, गीतकार हैं समीर।

साथियों, दूध केवल एक पेय नहीं बल्कि सेहत, ऊर्जा और पोषण का आधार है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसी महत्व को समझाने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह हमारी हड्डियों को ताकत देता है और स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। साथियों, भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है और हमारे किसान व दुग्ध उत्पादक देश की पोषण व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए सुनते हैं मन फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

साथियों, भारत का हर राज्य अपनी संस्कृति, इतिहास और खूबसूरती के लिए खास है और उन्हीं में से एक है समुद्र की लहरों, रंगीन संस्कृति और संगीत से सजा सुंदर राज्य गोवा। आज के दिन हम बात कर रहे हैं गोवा राज्य के गठन की। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके साथ ही यह भारत का 25वां राज्य बना। गोवा केवल अपनी खूबसूरत वादियों और समुद्री तटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक संगीत, ऐतिहासिक धरोहरों और सौहार्दपूर्ण जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की खुशियाँ, त्यौहार और लोगों का अपनापन हर किसी का दिल जीत लेता है। तो आइए, गोवा राज्य गठन के दिवस के इस खास अवसर पर हम सभी गोवा वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है जान तेरे नाम, गायक कलाकार हैं कुमार सानू।

0: इसी गीत के साथ बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक से अपने रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: जो है 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख रुपए का निशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। ये सुविधा उन NHM कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस पहल से NHM के हजारों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में VIP रोड पर स्थित श्रीराम मंदिर के पास सुंदर सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुल 4 सत्र होंगे, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत रायपुर शहरी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। एक समय जलभराव और गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे शहर में अब वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम ने तकनीकी विशेषज्ञों, बिल्डरों, संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से ये पहल शुरू की है। इसके तहत वर्ष 2025 में शहर में लगभग 32,000 वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं। इनमें रिचार्ज कुएं, परकुलेशन पिट, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ्ट और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी संरचनाएं शामिल हैं। जशपुर में कृषि विभाग की टीम ने फरसाबहार विकासखंड के खारीबहार गांव में छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक खाद बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसे किसानों को DAP खाद बताकर बेचा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM राकेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर मकान को सील कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, वक्त है तापमान सूचना का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अंबिकापुर शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना समाप्त। श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

दिल्ली केंद्र से आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय होगा। इसमें आप स्मिता मोकाशी का गायन सुनेंगे और रात 9:30 पर अखिल भारतीय युवा भारती युवा पत्रिका का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। हमारे केंद्र से थोड़ी ही देर में 10:05 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे 11:05 पर। दिन के 12 बजे मिश्रित गीत संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम सब रंग लेकर आएंगे हम। अबीदा परवीन की आवाज में पेश करेंगे हम कार्यक्रम कव्वालियां दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर और कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण समय होगा शाम 6:05 पर। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दिन के 1:40 पर। सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश पेश करेंगे हम रात 8:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप लेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर लोक संगीत के कार्यक्रम गोधुली का समय होगा। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे हम शाम 7:05 पर। रात 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर और साथ ही होगी किसानवाणी शाम 7:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम नए तराने का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। फिल्म है जन्नत 2, संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

कार्यक्रम नए तराने में पेश है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में ज्वाली LLB 2 फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है चितरंजन भट्ट का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। गायक कलाकार हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव। गीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे दे शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत है रेड फिल्म से राहत फतेह अली खां की आवाज में। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीत निर्देशन है तनिष्क बागची का।

0: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से।
1: आप सुन रहे हैं जावेद बसीर की आवाज में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है प्रीतम चक्रवर्ती का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म है जिला गाजियाबाद। गीतकार है शब्बीर।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: कार्यक्रम नए तराने में आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में मिशन मजनू फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीत

कार्यक्रम में अब सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजों में ललित पंडित के संगीत निर्देशन में बेशर्म फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम नए तराने का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पुष्पा 2 से श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम

आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू के गाये फिल्म आ अब लौट चलें के इस गीत से। इसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुनील साहिल और कुमारी सुजाता पोहरकर। इस गीत की फरमाइश भेजी है बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं नामागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां ने हमें पत्र लिखा है आज़ाद नगर लक्सर से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, बालौद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। इसी गीत की फरमाइश भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरग, जयतेग बिरग और मिक्का बिरग ने। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं दलाल फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज़ में। गीतकार हैं माया गोविंद और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में फिल्म हम तुम का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और संगीत दिया है जतिन ललित ने, और इस गीत को सुना चाहते हैं आप सब बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी और उनके परिवार के सभी सदस्य। इस गीत की फरमाइश भेजी हमारे औरंगाबाद के श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। नांदघाट से हमें पत्र लिखा है माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश और उनके ढेर सारे साथियों ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान

0: वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते है।
1: हाँ, अभी तो शुरू होगी साहब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर आप सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म हमारा दिल आपके पास है का ये गीत। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलधा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। दरचूरा से हमारे श्रोता हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की फरमाइश भेजने के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं इस पते पर। पता है आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27 और पिन है 497001। और अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म बरसात का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। डोंगरगांव ज़िला राजनंदगांव से हमें पत्र लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का, राधिका गजभिये। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और आबान अब्बासी ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन, यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से। भाई नरेंद्र कुमार तिवारी ने हमें पत्र लिखा है जेल रोड रायगढ़ से। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता ने भवानी, आकाश ने भवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर बरसात फिल्म का ये गीत।

चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विकी नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पप्पू छोटू सेन, लता और पूजा सेन। बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु, अंकित देवांगन। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। बेरडी से हुकुम कर कर्मकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर। आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म त्रिदेव का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शर्मा, शाइना और निवान शर्मा, नादेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले, मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर, सीता सरिता प्रिंस एकांश ग्वांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता, बहादुरा नागपुर से शैलेश ग्वांडकर, श्रीमती वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि और परी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना रिजवान, इमरान, चांदनी, फिरोज़ और नाज परवीन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है विजयपथ। श्याम अनुरागी के शब्दों को संगीत दिया है अनु मलिक ने और इसे गाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

फिल्म विजयपथ के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर। आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने

0: में आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक पहुंचकर आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमेन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। प्रदेश में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन और बदली बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। रायपुर रेल मंडल और स्थानीय प्रशासन ने IRCTC और रेलवे के लोगों का दुरुपयोग कर कम क्षमता वाले चाय के पेपर कप बनाने वाली एक फर्म पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान गुढ़ियारी स्थित एक फर्म में रेलवे के लोगों वाले तय क्षमता से कम आकार के चाय के कप बनाए जाते पाए गए। टीम ने मौके से ऐसे कपों से भरे 14 बोरे जब्त किए हैं। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि यात्रियों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पेय सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। किसी भी तरह की अनियमितता, फर्जी ब्रांडिंग या लोगों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। सबरंग कार्यक्रम का पहला गीत पेश है नुसरत फतेह अली की आवाज़ में। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत उत्तम सिंह का है। फिल्म का नाम है संगम। आइए सुनते हैं ये गीत।

सबरंग कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनिए। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत शंकर एहसान लोए का है, फिल्म का नाम है बंटी और बबली और इस गीत को गाया है अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने। आइए सुनते हैं सबरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में ये जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते है।
1: हाँ, अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाज़ में फिल्म फिजा का ये गीत। इसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है अनु।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: सबरंग कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं। इसे हमने लिया है फिल्म निकाह से, आवाज महेंद्र कपूर की है। गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीत दिया है रवि ने।
3: अभी अलविदा मत कहो।

महेंद्र कपूर के गाए फिल्म निकाह के इस गीत के साथ ही मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कव्वालियों का कार्यक्रम। कव्वालियों के इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं अबीदा परवीन। इनसे चंद कव्वालियाँ हम आपको सुनवाएंगे।

0: मां वो ही जिब्ह भी करे है वो ही ले सवाब उल्टा।
1: अभी आपने आबिदा परवीन की गाई चंद कव्वालियां सुनी। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: कर्नाटक के निवर्तमान

0: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आइए अब सुनते हैं खेती की बात में। आज का विषय है गर्मियों में सब्जियों का प्रबंधन कैसे करें।
3: किसान मित्रों, गर्मियों के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, करेला, खीरा, कद्दू, इन सब का उचित प्रबंधन बंपर पैदावार और अधिक मुनाफा लेने के लिए बेहद जरूरी है। इस वर्ग की फसलें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छी बढ़ती हैं, लेकिन 40 डिग्री से अधिक तापमान होने पर इनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। तेज गर्मी के दौरान फसलों में प्रत्येक 6 से 7 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर अवश्य करनी चाहिए। खेतों में पानी को जमा न होने दें, क्योंकि जल भराव से जड़ गलने की समस्या बढ़ जाती है। पानी की बचत और नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई विधि और मल्चिंग का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। आधुनिक तकनीक में इसे पानी की बचत के लिए भी अपनाना जरूरी है। रोपाई के बाद पौधों की जड़ों के पास वर्मिंग कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। फसल के विकास के दौरान रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन, यूरिया की आधी मात्रा को 2 बार में खड़ी फसल में ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में

बेहतर वृद्धि के लिए प्रति माह प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत का उपयोग जरूर करना चाहिए। किसान मित्रों, इस समय लगने वाले कीट और रोग का नियंत्रण भी करना बेहद आवश्यक है, जिसमें लाल कद्दू भृंग जो इन फसलों का मुख्य कीट है, इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय पौधे पर राख और केरोसिन के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी कद्दू वर्गीय फसलों को खराब होने से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप या मक्खी का जाल लगाना चाहिए, क्योंकि फल मक्खी इन सब्जियों को बहुत नुकसान करती है। इसी प्रकार चूर्णील असिता पत्तियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो घुलनशील गंधक या कार्बेंडाजिम का उचित छिड़काव से नियंत्रण में आते हैं। नीम के तेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का नियमित अंतराल पर छिड़काव करने से रस चूसने वाले कीड़े का प्रकोप कम होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई 45 दिन बाद जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार

0: नियंत्रण में आते हैं। नीम के तेल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का नियमित अंतराल पर छिड़काव करने से रस चूसने वाले कीड़े का प्रकोप कम होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई 45 दिन बाद जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार अधिक गर्मी के कारण मादा फूलों की संख्या कम हो जाती है, इसे संतुलित करने के लिए PGR अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अवश्य करें। कद्दूवर की सब्जियों के जैविक प्रबंधन में रसायनों के बिना कीटों रोगों और पोषण का नियंत्रण उत्तम है। इसमें मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बनी रहती और फसल पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पौधे के अच्छे विकास और फल उत्पादन के लिए केवल प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग उत्तम होता है। प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत को सिंचाई के पानी के साथ 10-15 दिन में खेत में देना चाहिए। बुआई के समय प्रति एकड़ 2 क्विंटल घन जीवामृत या अच्छी सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 3% पंचगव्य घोल का पत्तियों पर छिड़काव अवश्य करना चाहिए। सूखी घास या धान के पुआल से क्यारियों को ढके ताकि मिट्टी की नमी बची रहे और केचुए सक्रिय रहे। गर्मी के दिनों में रस चूसने वाले कीट और फल मक्खी का प्रकोप सबसे अधिक होता है। इसका जैविक नियंत्रण फलों को सड़ने से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फोरमन ट्रेप या तुलसी के पत्ते से बने घरेलू जाल लगाने चाहिए। सुबह के समय जब पत्तियों पर ओस हो तब उन पर लकड़ी की छानी हुई राख, इसमें कीट पत्तियां नहीं खा पाती। रस चूसक कीटों को आकर्षित करने के लिए और नष्ट करने के लिए खेत में 15 से 20 येलो और ब्लू स्टिकी टेप लगाएं। भारी कीट प्रकोप होने पर घर पर बनाए गए 10 बरनी अर्क का 3% की दर से छिड़काव उत्तम होता है।
1: गर्मियों में सब्जियों का प्रबंधन, इस विषय पर अभी आप खेती की बात सुन रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूं आपकी घर आंगन सखी चंदा। देखिए सखियों, जीवन में हर महिला कई जिम्मेदारियां निभाती है। घर परिवार, काम और रिश्तों के बीच कई बार ऐसे मुश्किल दिन भी आते हैं जब हमारा शरीर थका थका सा लगता है, मन बेचैन भी रहता है और छोटी छोटी बातें भी तनाव देने लगती हैं। इसके अलावा जब हम बातें करते हैं उन दिनों की जिनसे बहनें हर महीने गुजरती हैं, यानी पीरियड्स के वो दिन, इस समय भी कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां तो होती ही हैं। इन दिनों हमारी बहनों को होने वाली जो पेट दर्द की समस्या है, कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, उल्टी और कमज़ोरी जैसी कई समस्याएं इन 4-5 दिनों को और कठिन बना देते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में आप क्या करती हैं सखियों? देखिए, कुछ खास बातों का ध्यान हमें रखना है कि ऐसे समय में अक्सर पेन किलर या दूसरी दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो कतई सही भी नहीं कहा जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यह हमारे शरीर में दूसरी तरह की अन्य बीमारियां भी बढ़ाने लगती हैं। तो क्यों ना बहनों, हम कुछ समझदारी से काम लें, कुछ प्राकृतिक उपायों को चुनें जो राहत और सुकून दोनों देंगे हमें। तो चलिए आपसे साझा करते हैं दादी नानी के बताए वही उपाय। सबसे पहले तो गुनगुना पानी और गर्म सेक से यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीने से शरीर को दर्द में आराम भी मिलता है। शरीर में पर्याप्त पानी के साथ संतुलित आहार का भी हमेशा ख्याल रखें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दही, नारियल पानी और नींबू पानी से शरीर को भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा देखिए, अदरक, तुलसी, दालचीनी और काली मिर्च से बनी हुई जो हर्बल चाय

इसके अलावा हल्दी वाला दूध भी मन को सुकून के साथ शारीरिक दर्द को कम करने में बेहद मददगार होता है। माहवारी हो या फिर मेनोपॉज की स्थिति, इन दोनों ही समय में बहुत ज़्यादा तला भुना और जंक फूड खाने से आप बिल्कुल बचिए। क्षमता के अनुसार हल्का योग और थोड़ी वॉक भी शरीर को रिलैक्स करती है। और हाँ, पर्याप्त नींद ज़रूर लें और तनाव से दूर रहें। तनाव से दूर रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए हल्का संगीत, अपनी पसंद का कोई भी काम, कुछ समय के लिए खुद को निहारें, खुद के लिए कुछ समय निकालें और सखियों और परिवार से खुलकर बातें करें। देखिए, समय घर में रहने का हो, यानी फुर्सत के लम्हे हो या फिर यात्रा का समय हो, मुश्किल भरे दिन कभी भी आ सकते हैं, तो इन सब को भी आप ध्यान में रखिए और साथ ही साथ अपने घर की बेटियों और बहनों को भी इन सब की सही सही जानकारी बिल्कुल दें। याद रखें सखियों, स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की नींव होती है, इसलिए छोटी मोटी परेशानियों को या फिर माहवारी के दिनों को कोई बीमारी बिल्कुल ना समझें, बल्कि ये तो महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक सा हिस्सा है, इसलिए इन मुश्किल दिनों को खुद को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि शरीर की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको समझें और अपने तन और मन दोनों का ख्याल रखें। खुद का ख्याल रखना भी तो एक जिम्मेदारी है ना, तो आइए वादा कीजिए खुद से, मुझसे, कि आप सभी अपना ख्याल हर वक्त हर समय रखेंगी और हम भी आपका ख्याल रखेंगे, आपकी खुशियों का। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सखियों चलिए आज घर आंगन में आपसे एक राज साझा करते हैं। जी हाँ, दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि ये राज है आपकी खूबसूरती का, हमारी खूबसूरती का, हम सबके बेहतर स्वास्थ्य का, और तो और ये रहस्य है हम सभी की खुशहाली का भी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। जी हाँ, देखिए हम बात कर रहे हैं हर दिन की दिनचर्या में व्यायाम की आवश्यकता और उसके महत्व की। रोज़ाना 20 से 30 मिनट का व्यायाम शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत मदद करता है। सुबह की हल्की सैर, योग, व्यायाम, प्राणायाम, साधारण स्ट्रेचिंग भी शरीर में नई ऊर्जा भर देती है। इससे वजन तो नियंत्रित रहता ही है, तनाव का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। सखियों बेशक काम की व्यस्तता बहुत रहती है हमारे पास, लेकिन यदि हमें स्वस्थ और तनाव मुक्त रहना है तो व्यायाम का हर दिन एक डोज तो लेना ही होगा, क्योंकि नियमित व्यायाम हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न रखता है, और फिर हमारा आत्मविश्वास भी तो बढ़ाता है ना ये। तो आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और इसका भी एक ही मंत्र है, योग और व्यायाम, जिससे मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसी तरह देखिए, थकान हो, चिड़चिड़ाहट हो, निराशा हो, इन सभी के लिए भी एक ही मंत्र है, व्यायाम। तो आप भी यदि आह या ऊह से बचना चाहती हैं तो व्यायाम का एक डोज हर दिन ज़रूर लीजिए, और अपनी दिनचर्या को बहुत ही स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखिए। आप देखेंगी आपको इसका बड़ा लाभ और हेल्दी रिटर्न ज़रूर मिलेगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं अपने अगले अंक की तरफ, जो है शक्ति अभिव्यक्ति का, जिसमें हम बातें करते हैं सखियों ऐसी बहनों की से, ऐसी शक्ति स्वरूपा से, जिनकी मेहनत और आत्मविश्वास से उन्होंने कई उपलब्धियाँ बटोरी हैं और आज वो बन चुकी हैं समाज के लिए एक प्रेरणा। तो चलिए सुनते हैं शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में आज का ये अंक।

छुपी है एक भावना, यही है साधना सरगम की साधना। न शोर में न दिखावे में, उनकी शक्ति है हर एक अल्फाज में। धीरे धीरे दिलों में उतर जाना, यही तो है उनका सच्चा खजाना। हाँ बहनों, इन चंद पंक्तियों के माध्यम से निश्चय ही आप भी समझ गई होंगी कि आज शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में हम आपको किस शक्तिपुंज से मिलवाना चाहते हैं। यकीनन आप हैं सुरों की ऐसी मलिका जो संघर्ष, साधना और संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी और बंगाली भाषाओं के साथ कई अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी है। हर शैली में खुद को ढालने वाली आपकी आवाज़ में गजब की मिठास, भावनात्मक गहराई और स्थिरता है जो शक्ति को और शांत और सशक्त रूप से दर्शाती है। और इन्हीं गुणों को आत्मसात किया है आज की हमारी प्रेरणा, प्रख्यात पार्श्व गायिका साधना सरगम जी ने, जिनका वास्तविक नाम साधना घाणेकर है। आपका जन्म 7 मार्च 1969 को दाभोल, महाराष्ट्र में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिली। इनकी माता नीला घणेकरी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, जिनसे साधना जी ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सुरों से अपना नाता भी जोड़ लिया। गुजराती फिल्म कंकू पगली में पहली बार पार्श्व गायन किया, जबकि 1965 में हिंदी फिल्म रुस्तम से शुरू किया हिंदी फिल्मों में गायकी का सफर, और फिर कड़ी मेहनत और लगन से जल्दी ही अपनी पहचान भी बना ली आपने। बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है साधना जी ने। आपकी आवाज़ ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करती, बस दिलों में उतर जाती कुछ इस तरह से।

बहनों, शक्ति व्यक्ति क्रम में आज हम खो गए हैं गायिका साधना सरगम जी की बातों में, जिन्होंने 36 से भी ज्यादा भाषाओं में 2000 से भी अधिक गाने गाए हैं। 4 साल की उम्र में गाया उनका गीत चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक, आप सबको भी खूब याद होगा। इसी गीत ने हमें बचपन में टीवी से बांधे रखा था। पिघलता आसमान का गीत जिया नहीं लागे से आपने लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की और फिर उर्दू की तालीम से अपनी गायकी के अंदाज को और निखारा। हिंदी फिल्मों में आपके योगदान को भला हम कैसे भूल सकते हैं। रंगीला, विजयपथ, हम साथ साथ हैं, तेरे मेरे सपने, मोहरा, दीवाना, परदेस, देवदास, लगान, राजा हिंदुस्तानी जैसे अनेकों फिल्मों की सफलता में आपके आवाज़ के जादू का भी बड़ा हाथ रहा है। आपने कभी खुद को सीमित नहीं किया, बल्कि हर भाषा और हर मौके को अपनाकर खुद को और तराशा है। अपनी गायकी के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर और प्रतिष्ठित अवार्डों से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा आपने तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, 4 गुजरात राज्य पुरस्कार और हिंदी गायकी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो ये थी सखियों सुरों की साधिका साधना सरगम जी की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें ये सीख दे रही है कि हम भी जीवन में समर्पण और निरंतरता के साथ ही अपने सपनों को साकार करें।

धैर्य और संजीदा रहें अपने काम के। बहरहाल आप बताइए, आपको साधना सरगम जी का कौन सा गीत बेहद पसंद है और क्या आप भी अपने जीवन में किसी कला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? हम इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का। और आज शक्ति अभिव्यक्ति को समेटने से पहले चलिए सुनते हैं साधना सरगम और पंकज उदास का गाया हुआ एक बेहद ही खूबसूरत गीत फिल्म मोहरा से।

बहनों, इस प्यारे से गीत को आज हमने समर्पित किया है हम सबकी चहेती गायिका साधना सरगम जी को। आज शक्ति अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारा पूरा

घर आंगन परिवार उन्हें दे रहा है ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी उपलब्धियों के लिए। और अब शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में आज बस यहीं तक। और अब बढ़ते हैं सखियों अपने स्वाद की बगिया की तरफ यानी व्यंजन विधियों की तरफ, जहां आप सभी का दिल से स्वागत है। स्वाद का जादू और घर का प्यार, यही तो है घर आंगन की व्यंजन विधियों का आधार। और आज के व्यंजन जितने स्पेशल हैं ना, उतने ही अनूठे भी, क्योंकि ये परंपरागत स्वाद से कुछ हटके हैं, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। सबसे पहले हम बनाएंगे परवल की चटनी। जी हाँ, देखिए परवल का अचार और परवल की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी, आज हमारे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा परवल की चटनी। इसके लिए सामग्री है परवल 100 ग्राम, टमाटर 2 बड़े, मीडियम साइज़ का प्याज 1, हरी मिर्च 6 से 8, हरी धनिया की पत्तियाँ लगभग 50 ग्राम, नमक स्वाद से, सरसों तेल 1 चम्मच, लहसुन की कली 6 से 8, अदरक का टुकड़ा आधा इंच। और इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप प्याज छील कर परवल टमाटर और हरी मिर्च के साथ धीमी आंच पर सूखा भून लें। ध्यान रखें इन्हें सूखा ही भूनना है। फिर इनके छिलके उतार लें और ज़रूरत हो तो भुनने पर जला हुआ काला हिस्सा अलग कर दें। अब इन सभी को लहसुन अदरक हरी धनिया और नमक के साथ सिलबट्टे पर या फिर मिक्सर में दरदरा पीसें, ऊपर से सरसों का तेल मिला लीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल लीजिए। झटपट बनने वाली यह अनोखी स्वाद में परवल की चटनी आपको खूब भाएगी, ये वादा है हमारा। एक और बहुत ही ख़ास व्यंजन आपके लिए है सखियों, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और अच्छा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मधुमती से।

बहनों, इस प्यारे से गीत के साथ चलिए एक और प्यारा सा व्यंजन यानी बहुत ही चटपटा व्यंजन बनाते हैं, वो है साबुत धनिए की चटनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम बना रहे हैं साबुत धनिए की चटनी। इसके लिए सामग्री है साबुत धनिया 1 कप, उड़द दाल 1 चम्मच, लाल सूखी मिर्च 4, छोटे प्याज लगभग 10 और आधा कच्चा कसा हुआ नारियल और इमली का पल्प 1/2 चम्मच और इसके अलावा लहसुन की कली 6 से 8, तेल 1 बड़ा चम्मच, सरसों का के कुछ दाने हैं 1 चम्मच, करी पत्ते 10 से 12 और हींग चुटकी भर। और इसको बनाने की विधि है कि कढ़ाई में तेल गरम करके साबुत धनिया, उड़द दाल और सूखी मिर्च को आप डालकर इन्हें खुशबू आने तक भून लीजिए। इन्हें अलग करके थोड़ा तेल और डालिए, फिर उसमें प्याज के टुकड़ों को डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इन्हें ठंडा करके मिक्सर जार में सभी मिश्रण डालें और कसा हुआ नारियल, इमली का पल्प, नमक और पानी डालकर भी पीस लें और गर्म तेल में सरसों, हींग और करी पत्ते का बघार लगाइए, फिर से चटनी में मिला दीजिए। यही खुशबूदार धनिए की चटनी आप राइस या पराठे दोनों के साथ इंजॉय कर सकती हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में धनिया जो है वो शरीर को ठंडक भी देता है और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, तो ज़रूर इन फ़ायदों को भी ध्यान में रखिएगा और इन व्यंजनों के जरिए अपने स्वाद को भी बनाए रखिएगा। बहरहाल, अब चलने का समय भी हो चुका है, तो चलने से पहले हम इंतज़ार करेंगे आपके मेल्स का। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है gharangan@gmail.com। आज की हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। आज के घर आंगन से बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर आंगन को प्रेम, अपनापन और खुशियों से महकाते रहिएगा। आज चंदा को आप यहीं विदा दीजिए। नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म दाग के इस गीत से। गीतकार हैं साहिद लुधियानवी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा चंडीगढ़ से, सतीश जग अजनेजा और विमल अनेजा, राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी गांव फ्रांसी हिसार से, चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश और नेहा वान्या सिंगरौल, आप सब ने जगह का नाम नहीं लिखा। ग्राम पाहरा जिला दुर्ग से पोषण वनछोड़, चंद्रकिरण प्रीति और छाया, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार, ग्राम सौगा मगरलोड से उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता, ग्राम नथाना पंजाब से, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाड़े, रघुवीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, अकोला से सुशीलानंद मंदूरकर और सदानंद, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या और उनके बहुत सारे साथी। इस गीत की फरमाइश भेजी है बीड शहर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी और जयश्री। अकोला से हमें मेल किया है सुयश राय और अलका राय ने। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका। इस गीत की फरमाइश भेजी है

कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजी है आप सभी ने शिवपुरी से अरुण जैन, मोनिका जैन, इंदौर से वंदना, पुणे से अर्चना साने, नोहर जिला

हनुमानगढ़ राजस्थान से डॉक्टर राकेश मधुलता और प्रांजल, सूरतगढ़ से पिंकी शोभा, अनिल कौशिक, पारितोष आशुतोष, हनुमानगढ़ से ही सुल्तान सिंह और भूपेंद्र सिंह, कोटा से कविता शर्मा, हरिओम और बेबी प्राहिता। इस गीत को सुना चाहते हैं खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, पलारी से हमें मेल करते हैं, रायगढ़ से गेंदूलाल और कौशिक। इस गीत को रायगढ़ से भी सुनना चाहते हैं गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण बाधवानी और गेंदू भाई। पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और उनके बहुत सारे साथी। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर अपेक्षा, अमीन दीवान, आदेश कुमार काले। सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी गणेश कामले, सदर बाजार कुरावली से हमें मेल किया है अनिल कुमार, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, एकता कॉलोनी, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें मेल करते हैं हमारे श्रोता राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बबलू डब्लू, बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, आप सब ने मेल किया है पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार बीटू और उनके बहुत सारे साथी, स्टेट बैंक नगर पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लव शर्मा, रोशनी शर्मा, पी एस नावकर, निर्मला, विशाल सोपान, नारायण, आशिक, आशीष और उनके बहुत सारे साथियों ने हमें मेल किया है नरवेल महाराष्ट्र से, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, यामिनी और उमा तिवारी, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और उनके बहुत सारे साथी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर ने हमें मेल किया है बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं पूर्णिमा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए कोहरा फिल्म का गीत। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने और इसे गाया है हेमंत कुमार ने ही। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज कुमार, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू ने मेल किया है हमें रायपुर छत्तीसगढ़ से। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया इसी गीत को सुनना चाहती हैं। धौरपुर विकास खंड लुंड्रा से हमारे श्रोता हैं प्रफुल्ल खंडा, कैरव गर्वी, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार। धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। सहारनपुर से सैयद मसरून इंसा, शैना हसन और इब्राहिम। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और उनके बहुत सारे साथी। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। खामगांव से अनंता वाढ़े, रामेश्वर, शुभम, साक्षी और खुशी। फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु। दतरेंगी से हीरा मणिवर्मा, पारस्वरी मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा और नोखीलाल वर्मा। आइए श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है वक्त, आवाज़ आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और धुन क्या तैयार की है रवि ने, और इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी, चांदनी चौक गंडई से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानो, रविंद्र रौनक सेन, इसी गीत की फरमाइश भेजी है हमारे श्रोता हैं नारगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जुगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, कमलकांत मरावी, मिलन मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, आप सब ने हमें मेल किया है लोरमी ग्राम चचेड़ी से, मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर, उमंग मालिक मलिक और माही मलिक, इसी गीत को सुना चाहते हैं महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें मेल किया है मुकेश

कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने इस गीत की फरमाइश भेजी है। हमारे खंडवा के श्रोता है मोहम्मद रफीक पंवार, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकीब पंवार, अलमास और उनके ढेर सारे साथी हैं। आप सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं वक्त फिल्म का इसी गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में फिल्म ये रात फिर ना आएगी का गीत। बोल है अजीज का कश्मीरी के और संगीत ओपी नैयर का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार। जिला हांसी से रामधारी अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप, बेबी कीरत और आवाना। इसी गीत की फरमाइश भेजी है उदयपुर के हमारे श्रोता है बाबू भाई भारती। कृष्णा गालोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी और बबलू डब्लू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों

0: कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र

0: इस संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फैज़ अनवर के लिखे इस गीत से, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

गीत गंधा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तलत अजीज़ की गाई ये गज़ल। शायर हैं तलत अजीज़।

कुछ गीत गंधा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल, शायर हैं निदा फाजली।

जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। ये गज़ल अभी आपने सुनी। शायर थे निदा फाजली और आवाज़ जगजीत सिंह की थी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं तलत अज़ीज़ की गाई ये गज़ल। शायर हैं सईद शहीदी।

तलत अज़ीज़ की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। सभा समाप्त करने से पहले आपको आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें। रात 9:30 पर अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:00। किसानों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर सुनिएगा अनुज राम और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत और शोभानाथ बरगा और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत। युवाओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होता है शाम 5:30 पर। ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली FM गोल्ड के कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जनडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 90 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राटरोड, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के

0: बिलाईगढ़ में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये जोगीडीपा, सरगुली, धौराभाठा, कोलडीपा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, गौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनते हैं नितिन मुकेश की आवाज़ में ये हनुमान चालीसा।

नितिन मुकेश की आवाज में हनुमान चालीसा के बाद लीजिए अब सुनते हैं विपिन सचदेव की आवाज में ये भक्तिमय स्तुति। लिखा है बलबीर निर्दोष ने, संगीत निर्देशन है सुरिंदर कोहली का।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। लीजिए अब सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व की आवाज़ में ये कबीर भजन।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

अभी आप सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में दिल्ली सिख फिल्म का ये भजन। लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत निर्देशन था यार रहमान का। इसी के साथ ही गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

पेड़ों की छांव में बचपन मुस्कुराता है, नदियों का पानी ही जीवन कहलाता है। अगर धरती को आज भी बचाना है दोस्तों, तो जनरेशन जेड को अब आगे बढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त चंचला यादव। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और जनरेशन जेड पर, यानी वो नई पीढ़ी जो रील्स भी बनाती है, ट्रेंड भी चलाती है, और अब धरती बचाने की जिम्मेदारी भी उठाने लगी है। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब सेफ एनवायरनमेंट सिर्फ किताबों में लिखा जाता था, लेकिन आज की जनरेशन जेड उसे हैशटैग बनाकर दुनिया तक पहुंचा रही है। कोई साइकिल चलाकर कार्बन कम कर रहा है, तो कोई प्लास्टिक छोड़कर कपड़े का बैग यूज़ कर रहा है, और सच कहें तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ बातें नहीं करती, एक्शन लेना जानती है। अब जरा सोचिए, सुबह उठते ही अगर मोबाइल में नो इंटरनेट दिख जाए तो आधे लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर एक दिन नो ऑक्सीजन दिख गया तब क्या होगा? यही सोच आज की जनरेशन को जागरूक बना रही है। दोस्तों, पहले फैशन सिर्फ कपड़ों में होता था, अब इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल भी ट्रेंड बन चुका है। रीयूजेबल बॉटल्स, थ्रिफ्ट फैशन, प्लांटिंग ब्लॉग, क्लीन अप ड्राइव्स, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि बदलती सोच की निशानी है। और हाँ, आज का युवा सिर्फ सेल्फी नहीं लेता, वो पेड़ लगाकर उसके साथ फोटो भी डालता है और कैप्शन होता है न्यू फ्रेंड एडेड। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बड़ा बदलाव ला रही हैं। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ जंगल या नदियाँ नहीं हैं, ये हमारी सांसें हैं, हमारा भविष्य है। अगर आज मौसम अचानक बदल रहा है, कभी तेज़ गर्मी, कभी बेमौसम बारिश, तो ये धरती का वार्निंग मैसेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरेशन जेड इस मैसेज को समझ रही है। आज स्कूल कॉलेज के युवा क्लाइमेट चेंज पर खुलकर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर धरती सुरक्षित होगी तभी भविष्य शानदार होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा, असल बदलाव तब आएगा जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी आदतें बदलेंगे, जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना, और सबसे ज़रूरी पेड़ लगाना। क्योंकि आने वाले समय में लग्जरी बड़ी गाड़ी नहीं होगी, लग्जरी होगी साफ हवा और शुद्ध पानी। तो चलिए आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम सिर्फ स्मार्ट यूथ नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल यूथ भी बनेंगे। तो दोस्तों, मुस्कुराइए, जागरूक रहिए और अपनी धरती को हरा भरा बनाइए। इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं फिल्म धुरंधर द रिवेंज का गीत खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में।

स्वागत है आप सभी का क्रम एक ही फिल्म से में। कभी दोस्ती में प्यार छिप जाता है तो कभी प्यार में जीत की जंग शुरू हो जाती है। और जब कॉलेज की गलियों में सपने, स्टाइल और स्टारडम एक साथ उतरें तो समझ जाइए कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पूरी एक फिल्मी दुनिया की बनने वाली है। इस क्रम में हम बात करते हैं फिल्म के किस्सों की और उन राजों की जो हर किसी को पता नहीं होते। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी चमचमाती कॉलेज लाइफ में जहां हर फ्रेम फैशन

से भरा था। हर डायलॉग में एटीट्यूड था और हर गाने ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है फिल्म का नाम बताने का, पर पहले सुनते हैं फिल्म का प्यारा सा गीत साहिद माल्या, निशा और मेरियानी की आवाज़ों में। गीत दिया है अनिविता दत्त ने, संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया बल्कि तीन नए चेहरों को रातों रात स्टार बना दिया, आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन तीनों की यह पहली बड़ी फिल्म थी। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि शूटिंग शुरू होने से पहले इन तीनों को बेहद स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई थी।

सुबह सुबह जिम, डाइट कंट्रोल और घंटों डांस प्रैक्टिस। कहा जाता है कि शूटिंग हो रही थी लेकिन कैमरे के पीछे इतनी ठंड थी कि कलाकार बार बार कांप रहे थे, जबकि स्क्रीन पर सब कुछ कूल दिखाना था। यही तो फिल्मों का जादू होता है दोस्तों, जो पर्दे पर आसान दिखता है असल में उसके पीछे मेहनत का पूरा पहाड़ छिपा होता है। आगे और भी बातें करेंगे, तब तक सुनते हैं इसी फिल्म का अगला खूबसूरत सा गीत श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल ददलानी की आवाज़ों में।

फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर इस फिल्म को बेहद ग्रैंड बनाना चाहते थे, इसलिए कॉलेज को सेट इतना शानदार बनाया गया था कि कई लोग कॉलेज को यूनिवर्सिटी समझ बैठते थे। यहाँ तक कि कुछ सीन की शूटिंग के दौरान कैमरा एंगल और लाइटिंग इतना काम होता था उस पर कि हर फ्रेम ड्रीम लाइफ जैसा लगे। एक और दिलचस्प बात दोस्तों, फिल्म में दोस्ती और कंपटीशन की जो केमिस्ट्री दिखी वो कैमरे के बाहर भी देखने को मिलती थी। शूटिंग के दौरान तीनों नए कलाकारों में यह होड़ रहती थी कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, और शायद यही वजह रही कि फिल्म की एनर्जी इतनी रियल महसूस हुई। दोस्तों कई बार फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक नई पीढ़ी का स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है, और यह फिल्म बिल्कुल वैसी ही थी। तो आइए इसी फिल्म का अगला गीत सुनते हैं विशाल शेखर की आवाज़ में।

साथियों, अब जिक्र करते हैं उस चीज का जिसने इस फिल्म को युवाओं की प्लेलिस्ट का सुपरस्टार बना दिया है, वो है इनके गाने। जी हाँ, डिस्को दीवाने, राधा, इश्क वाला लव और वेले जैसे गानों ने उस दौर में कॉलेज फेस्ट से लेकर पार्टियों तक धूम मचा दी थी। फिल्म का संगीत दिया था विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी की जोड़ी ने, जबकि कुछ गानों में सलीम मर्चेंट और सुलेमान मर्चेंट का भी शानदार योगदान रहा। गीतों को आवाज़ दी थी श्रेया घोषाल, शान, नीति मोहन, बेनी दयाल और कई शानदार गायकों ने। और अगर कमाई की बात करें तो लगभग

60 करोड़ के आसपास की कमाई करके इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, असली जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, असली जीत थी लोगों के दिलों में जगह बनाने की। तो दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिर्फ एक कॉलेज फिल्म ही नहीं थी, यह सपने, दोस्ती, प्यार, कंपटीशन और युवाओं की चमकती दुनिया का ऐसा सफर था जिसने लाखों युवाओं को अपने जैसा महसूस कराया। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का और एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज भी जब इस फिल्म के गाने बजते हैं तो कॉलेज के दिन, दोस्त और वो मस्ती भरे पल याद आ ही जाते हैं। तो आप भी मुस्कुराइए और जिंदगी को थोड़ा फिल्मी अंदाज में जीते रहिए। इसी के साथ आज का क्रम एक ही फिल्म से बस यहीं तक।

दोस्तों बस इतनी ही बातें आज के लिए, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए अपनी दोस्त चंचला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम विचार बिंदु में लीजिए अब सुनते हैं नैतिक साहस विषय पर आलेख। वाचन स्वर और संकलन है जयमाला सिंह का।
2: मनुष्य के जीवन में अनेक गुणों का महत्व है, परंतु साहस ऐसा गुण है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। साहस केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और सत्य के साथ खड़े रहने की क्षमता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में साहस होता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के होते हुए भी सही कार्य करना है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य डर, असफलता या आलोचना के कारण पीछे हटने लगता है। ऐसे समय में साहस ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने साहस का परिचय दिया, वही समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बने। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों ने अपने साहस और देशभक्ति से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहसी व्यक्ति कभी कठिनाइयों से नहीं घबराता। साहस केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। सत्य बोलने का साहस, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस, असफलता के बाद पुनः प्रयास करने का साहस, ये सभी जीवन को सफल बनाते हैं। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में ईमानदारी बनाए रखना, एक कर्मचारी के लिए अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना तथा समाज के लिए सही बात का समर्थन करना भी साहस के ही रूप हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी साहस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब उसके भीतर अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। यह संदेश मनुष्य को निर्भय होकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। साहस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उज्जवल बनाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। साहसी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में साहस का विकास करना चाहिए। साहस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह प्रकाश है जो अंधकारमय परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है। जीवन में सफलता केवल ज्ञान, धन या शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस व्यक्ति को संघर्षों से लड़ने, कठिनाइयों को स्वीकार करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन रास्तों को चुनता है, तब उसका साहस ही उसे गिरकर फिर उठना सिखाता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी का साहस अवश्य रहा है। चाहे वह वैज्ञानिक खोज हो, सामाजिक परिवर्तन हो या राष्ट्र की स्वतंत्रता, हर सफलता साहस की कहानी कहती है। आज के समय में नैतिक साहस की सबसे अधिक आवश्यकता है। समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय, असत्य और भेदभाव जैसी समस्याएं तभी समाप्त हो सकती हैं जब लोग साहस पूर्वक सही बात का समर्थन करें। नैतिक साहस वह है जिसमें व्यक्ति सत्य, न्याय और धर्म के लिए खड़ा होता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। प्रकृति भी हमें साहस का संदेश देती है। छोटी सी चींटी बार बार गिरकर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करती है। नदी बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंततः साहस जीवन का अमूल्य गुण है। यह मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुँचने की शक्ति देता है। यदि व्यक्ति के पास साहस है तो वह हर कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी

0: आप सुन रहे थे नैतिक साहस विषय पर आलेख, वाचन स्वर और संकलन था जयमाला सिंह का। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रतिहा थम जही प्रचार। परंदिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्चर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून के मतदान होही। ये चुनाव मनबर प्रचार के आज आखिरी दिन हरय। आज रतिहा 12 बजे ले प्रचार थम जही। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके संपर्क करही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले दे गए जानकारी के अनुसार नगरी निकाय मन में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत मन में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी के प्रक्रिया पूरा होए के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस। उन्हें सरपंच के 15 पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए है। शेष 34 पद पर मतदान होही। ऐसने जनपद सदस्य के 10 पद पर 1 जून के मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थान पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनाव पर मतपेटी के माध्यम ले मत डाले जाही। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान पर सबो तैयारी पूरा कर ले है। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। 1 मई ले शुरू होए जनगणना के पहलिया चरण में 92% ले ज्यादा काम पूरा हो गए है। प्रदेश में जनगणना पर 48,782 ब्लॉक बनाए गए रहिस। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल है। यही आधार में प्रदेश में 80 लाख ले ज्यादा मकान बन के आंकड़ा आगू आए है। ये मकान बन के पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड के हिस्सा बनत है। आज आखिरी दिन शेष बाचे घर मन में जाके प्रगणक मन आंकड़ा अपडेट करीन। जनगणना के दूसरिया चरण अवैया बच्छर 1 फरवरी ले शुरू होही। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बच्छर 1826 में आज के दिन हिंदी भाषा के पहलिया समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित हो रही। हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करीन। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री हकीन की मीडिया के सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति ला ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार लगलो आत्ममंथन और बेहतर कार्य के दिशा प्रदान करते। उमन कहीन की पत्रकारिता हर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाए है। कार्यक्रम ला वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश हाघलो संबोधित करीन। अतिथि मन के स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देवैया वरिष्ठ पत्रकार मल्ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले सम्मानित करीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कहिन है कि उनखर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून ले सक्रिय हो जही। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी मन के उत्तर पुस्तिका मन के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे बर ए पोर्टल ला शुरू करे जात है। एखर ले मूल्यांकन के सर्वोच्च मानदंड स्थापित होही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 26 जुलाई के आयोजित होवैया लिखित परीक्षा ला स्थगित कर दी गई है। सिख धर्म के 5वां गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौका में गुरुद्वारा मां सबद कीर्तन के आयोजन करे जाते। एकरे संग राहगीर मल्ला भीषण गर्मी में सरबत पिला के गुरु के बलिदान के स्मरण करे जाते। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहादत दिवस में उनला भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार

0: समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ बाते समाचार कोती। राज्य सरकार हा चालू वित्तीय बच्छर मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सब्बो जिला मल्ला 2,670 करोड़ रुपया ले ज्यादा के केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी करे है। ये राशि SNA स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम ले जिला मल्ला आबंटित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय कहिन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 ले ज्यादा पक्का आवास के निर्माण करे जाते। उमन बतैन की पाछू ढाई बच्छर में 1,60,000 ले ज्यादा आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया गरियाबंद जिला के अधिकारी मन के बैठका लीन। बैठका में उमन स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन समेत अलग अलग विषय मन ऊपर चर्चा करत हुए अधिकारी मल्ला जन प्रतिनिधि मन के सहयोग ले विकास कार्य मल्ला प्रभावी ढंग ले संपादित करे ऊपर जोर दीन। राज्यपाल हा रेत के अवैध खनन ऊपर रोक लगाए और वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करे बर घलो किहिन। उमन किहिन कि किसान मल्ला प्राकृतिक खेती और हाइड्रोपोनिक्स खेती अपनाए बर प्रोत्साहित करे जाए। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण ले सम्मानित तिजन बाई के तबियत बिगड़े के बाद उनला हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराए गए है। चिकित्सक मन बतैन कि उखर स्वास्थ्य में सुधार हुआ थे। डॉक्टर मन के टीम लगातार उखर स्थिति ऊपर नजर रखे हुए है। तिजन बाई के अस्वस्थ होए के सूचना मिले के ऊपर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल दूरभाष में तिजन बाई के परिजन मल ने बातचीत कर उखर हाल चाल जानी। ये दौरान उमन भरोसा दिलाईन कि राज्य शासन तिजन बाई के चिकित्सा और जरूरी सहायता पर पूरा संवेदनशीलता के संग खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और NHM के अधिकारी और कर्मचारी मल्ला 6,00,000 रुपया के निशुल्क लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिली। स्वास्थ्य विभाग एक हर बारे में बैंक ऑफ इंडिया के संग MOU करे के अनुमति दे है। ये सुविधा उन NHM अधिकारी मल्ला मिली जिखर वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु के स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान करे जाहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हकीन है कि ये पहल ले NHM के हजारों कर्मचारी मल्ला सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त लाभ मिली और उखर परिवार मल्ला आर्थिक संबल घलो मिली। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के आज दूसरा दिन है। महोत्सव के उद्घाटन काली राज्यपाल रमेन डेका करीन। ये मौका में उमन किहीन कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म के अपार संभावना है। उमन किसान मल्ले पारंपरिक खेती के संगे संग आधुनिक तकनीक मल्ला अपनाए और आम के वैल्यू एडिशन ऊपर ध्यान दे के आह्वान करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णु देसाय कहिन कि किसान मन के आय ला बढ़ाए में आम के खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकत है। महोत्सव में देश भर के 250 ले ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शित करेंगे है। ये महोत्सव काली इतवार तक चलही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहाले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एक संग्रह रिले करही। ये बखत के अंक मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घो फेर। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रथिया थम जही प्रचार। परंदीन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरे और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहरले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के आयोजन करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी रायपुर से कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के

6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधली। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनते हैं अनुज राम और साथियों के स्वर में भुईहारी कर्मा गीत।

शुभनाथ और साथियों के स्वर में इस किस्म खेल कर्मा गीत के साथ ही कार्यक्रम गुदली यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं केके की आवाज़ में क्रूक फिल्म का एक गीत।

आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन हैं जावेद अख्तर का, माफ़ कीजिएगा, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: खैरिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
0: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
0: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं सत्यमेव जयते फिल्म का गीत आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में। गीतकार हैं कुमार और संगीत से सजाया है रोचक कोहली ने।

आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज़ में इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम माधुरी यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव का आयोजन किया गया। और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे से प्रचार थम जाएगा, इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है, शेष 34 पदों पर मतदान

0: होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मतपेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक जाकर प्रगण ने आंकड़े अपडेट किए। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी से शुरू होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन तथा बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
1: वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है।
0: कार्यक्रम को वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केजी सुरेश ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी जिलों को 2,677 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी की है। ये राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि किसानों को खाद की कमी है और इस संबंध में शिकायत मिलती है तो केंद्र सरकार इस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। आज भिलाई प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि के लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक कृषि रोडमैप तैयार नहीं किया है वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र के कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा।
2: हमारा तो प्रयास रहेगा कि यहाँ कृषि रोड मैप बने और यहाँ जो किसानों को असुविधा अगर है तो वो शिकायत करे, माने हम लोगों को खबर कर, और हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को खाद की कमी न हो। हाँ, उसकी समस्याओं को दूर भगाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास करेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिख धर्म के 5वें श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राहगीरों को भीषण गर्मी में शरबत पिलाकर गुरु के बलिदान का स्मरण किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
1: आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर सत-सत नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और सिख समाज बहुत प्रारंभ से ही, जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, अनेकों उदाहरण हैं।
0: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण

भूषण से सम्मानित तीजनबाई की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। तीजनबाई के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दूरभाष पर तीजनबाई के परिजनों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य शासन तीजनबाई की चिकित्सा और आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अंबिकापुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोंडागांव सहित कुछ जिलों में आज तेज हवा और अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ और खंभे भी गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं कोंडागांव जिले में भी तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी, बड़े सिलाटी और बड़े कनेरा में भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरियाबंद जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख रूपये का निःशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जशपुर के खारीबहार गांव में कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक उर्वरक बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा और पिसौद में कृषि विभाग ने खाद दुकानों से 2600 बोरी से अधिक खाद जब्त कर इन दुकानों को सील कर दिया है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, इस वक्त रोज हम आपको देते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आइए नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

अब से कुछ देर बाद शाम 7:05 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसी के अंतर्गत कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनिएगा शाम 7:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती, और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में स्मिता मुकाशी का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब नजर डालते हैं कल यानी कि 31 मई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। सुबह 6:05 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस का गायन। गायन स्वर होगा ए हरिहरण का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। कार्यक्रम खेती की बात में प्रातः 6:45 पर आप सुनिएगा आधुनिक कृषि यंत्र विषय पर सामयिक सुझाव। लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा कुछ सादरी लोकगीत प्रातः 7 बजे। प्रातः 7:10 पर आप सुनिएगा भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। प्रातः 7:30 पर आप सुनिएगा जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। प्रातः 8:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम किस्सा कहनी, शीर्षक होगा नदिया बैला। संकलन व लेखन श्री देव नारायण सिंह, संयोजक नागेंद्र दुबे, प्रस्तुतिकर्ता शोभना साहू, प्रतिभागी मृदुल गुप्ता और शोभना साहू। सामुदायिक गीत के प्रशिक्षण पाठ में प्रातः 8:45 पर आप सुनिएगा असमिया गीत का प्रशिक्षण, गीतकार होंगे सतीश दास। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9 बजे। कुछ नए फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 10 बजे। कार्यक्रम मन की बात आप सुनिएगा प्रातः 10:55 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और इसके तुरंत बाद आप रायपुर से मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सुनिएगा। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सर्वरंग होगा दोपहर 12 बजे। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर। श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा होगा दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनिएगा शाम 6:05 पर। और कार्यक्रम कानून की बात आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। विषय होगा घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता, वक्ता श्री मयंक सिंह ठाकुर, अधिवक्ता जिला धमतरी। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और कल रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में ए येरिया इयाह का कर्नाटिक सैक्सोफोन वादन। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 होने वाले हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे गुलाम अली की आवाज में इस गजल के साथ। लिखा है नासिर काजमी ने, संगीत से सजाया है रफीक हुसैन ने।

गुलाम अली की आवाज में इस गजल के बाद लीजिए सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में ये गीत। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है अदनान सामी का।

कार्यक्रम रजनीगंधा के अंत में लीजिए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल। शब्द रचना है हसन कमाल की, संगीत से सजाया है रवि ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल।

0: बीनू भैया राम राम।
1: राम राम परसु भैया।
0: बीनू भैया बाहर कति तो अभी हम तो भीतरी बैठे हैं, बाहर कति तो अंधड़ पानी बरखा कर गजब कर स्थिति हो गई से।
1: देखी भाई यदे जोहत रहन हमरे यदे बरिसो पानी हमर देसे आउ आज चटी के दे नगा दे दे बरसी से आउ गिरी से तो भाई चटी तो राहत भेटा ही।
0: हाँ लेकिन अभी बतात रहन अभी मोबाइल में भी सुनेन कि अंधड़ पानी अभी सरगुजा क्षेत्र में तो 3 घंटा बहुत तेज चली, तो वो हिसाब से अपन ध्यान रखें, बाहर कति घूमत सब कोई घूमत हो ही तो घर कति जाना ठीक है अभी, और खेती बाड़ी कर भी देखना पड़ी और लड़का बच्चा मन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे घर पहुँचिन कि नहीं पहुँचिन, एक बारे में भी हमन ला ध्यान रखना पड़ी।
1: जरूर भाई देखिए दे भाई अगर चेतावनी भेटाई है तो जरूर कहीं ना कहीं देखियो हिसाब कर हरकत हुई मौसम में, देखी भाई चट्टी उतार चढ़ाव भी होल तो हम अल्लाह अपन स्तर से जरूर सतर्क रहना चाहिए और राउर भी सुगर अपन तरफ से सलाह दें तो देखी भाई अपन वो हिसाब से तैयारी जरूर रखें।
0: लाइट भी नहीं है बीनू भैया, कई जगह में अंधार हो गई से,
1: अंधार
0: तो इस समय कीड़ा मकोड़ा भी और सांप भी निकले, और बिल में जैसे अभी बहुत गर्मी का समय है, बिल में पानी घुस ही ना तो सांप हर सीधे बाहर निकले, एकदम गर्म उमसेल ना वहाँ पर तो निकलते हैं, तो ओकर भी ध्यान रखना है। बाकी घर में बैठ के बढ़िया आलू कर सब्जी गीला तरकारी बनाए के रोटी चाहे सब्जी चावल खाए के अभी मजा दे ही।
1: दाल भात और आलू कर भुंजरी इतना सुघर नहीं कि झन कही। बाकी देखी राउर आलू कर गोठला शुरू करें नहीं तो सूरता घलो आइस की आज कर दिन हर देखी विश्व आलू दिवस है।
0: बहुत बड़ा दिन है आलू कर जो पसंद रहे ना लड़का बच्चा मन, हमन तो बचपन में जब कहीं सब्जी नहीं जो बिठात रहीस ना बीनू भैया, तो आलू चाहे भूज के चाहे आलू कर जो बढ़िया गीला सब्जी और चाहे आलू कर जो राउर कहन भुजिया बनाए के ओला जब खाथन ना तो बहुत स्वाद लगे।
1: सोच भाई यदि बरत अंगूर में यदि डाल के यदि हेर के जो खाई नहीं तेकर भी गजब कर आनंद की नहीं। अब आलू एगो ऐसे सब्जी है नहीं जिला कथी हमरे सब्जी का राजा है,
0: राजा है और पोषण खाद्य सुरक्षा रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कर आधार ला कहल जाते आलू ला, और आज के दिन ला विश्व आलू दिवस घोषित करल गई से, और एकर जो महत्वपूर्ण दिवस एकर बर है कि अरबों लोग मन कथे कि जेमन ला कार्बोहाइड्रेट कर ऊर्जा कर पूर्ति करना हो, विटामिन सी कर पूर्ति करना हो, विटामिन B6 देना हो, पोटेशियम फाइबर देना हो, तो बहुत सस्ता में हमन ला ये जो स्रोत है एकर आलू के रूप में हमन ला भेटायल।
1: देखिए ये देख कहीं नहीं तो पोषक कर हिसाब से तो बहुत सुघर है ये है, लेकिन रिकिम रिकिम कर पकवान कर हिसाब से देखिए चोखा कर गोट कर ली
0: चोखा,
1: मैं कहने दे भाई बढ़िया अंगूर में भूंज के खा ली, देखिए ये दे भाई संग संग भुंजिया बना ली, ये दे मस्त रसादार ये दे सब्जी बना ली, कही तो दे बढ़िया चिप्स काट ली
0: एकर, चिप्स बने
1: ली। अब आजकल तो अंग्रेजी में का फ्रेंच की कैसे एगो नाम है
0: फ्रेंच फ्राइज
1: नहीं तेला बढ़िया दे भाई काट के और खाए खाते हैं और नगद पसंद करते हैं आजकल कर लड़का मन,
0: बाकी कम तेल में जो भी बने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बीनू भैया तेल कम उपयोग करना है, चाहे खाए कर तेल हो चाहे गाड़ी में डाले वाला तेल हो, सब कति हमन के ध्यान रखना है। और आलू कर एक बात और है कि भारत और चीन मिलकर विश्व कर लगभग 40% आलू उत्पादन में योगदान देते हैं, और भारत कर जो नंबर है विश्व में दूसरा आलू उत्पादक देश के रूप में है। भारत में अभी हमन देखब तो 60 मिलियन टन आलू उत्पादन दर्ज करल गई से, एकर से भी ज्यादा है, और बढ़िया आलू का उत्पादन हमर क्षेत्र में हमन देखब तो मैनपाट में जितना पहाड़ी क्षेत्र में है इते कुसमी क्षेत्र में बलरामपुर क्षेत्र में सब जगह बढ़िया आलू का पैदावार हमन लेथन, और सफ़ेद आलू भी बढ़िया होल और लाल आलू भी बढ़िया।
1: देखिए भाई आलू तो भाई आलू आए आलू कर गोट करी तो भाई मन हर करेल कि खाए देते नहीं, लेकिन एक समय रहीस देखी भाई बढ़िया उगात रहीन बना भाई बनात भी रहीन, बाकी चट्टी कभी कर समय में अगर गोट करी तो वर्तमान समय में हमर जो जलवायु है तेहर बदलता है तो भाई जम खेती पाती ला चट्टी तो डहात है यार, अब ऐसे समय में वैज्ञानिक मन अपन अनुसंधान से भी ये दे भाई बढ़िया बढ़िया आलू कर किसी मन ला विकसित कर रहा है जेहर देखिए दे अगर सिंचाई कर नगद सुविधा नहीं है तब वो भाई हो सके अधिक तापमान अगर हमर जगह है वहूँ में हो सके और रोग रोधी किसी मन कर भी विकास करे कर प्रयास हमर वैज्ञानिक मन कर है।
0: बढ़िया।

0: हमारे यहाँ जलवायु जो रहल ना एकर सीजन जो हमन देखथन तो हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में एकर मुख्य रूप से बुआई हमन देखथन। कंद विकास कर समय दिसंबर जनवरी रहल और फरवरी मार्च तक हमन देखथन कि एकर कोड़ाई भी हमन करथन और एकर भंडारण विपणन भी एकर करथन। तो ये मुख्य रूप से सीजन है, बाकी और समय में भी आलू हमन लगा सकत हन। तो जलवायु परिवर्तन के दौर में झुलसा रोग एक ठो लगेल और गुणवत्ता युक्त बीज कर कमी हमन देखथन। कभी कभी किसान मन शिकायत करते हैं कि बीज अगर बढ़िया हमन की मिल जाए तो एकर बढ़िया उत्पादन हमन कर सकत हन। एकर अलावा जो कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त रूप से व्यवस्था होना चाहिए और बाजार में जो मूल्य कर जो उतार चढ़ाव होयल ओकर से भी हमारे किसान मन प्रभावित होते हैं, तो वही हिसाब से हमन के उत्पादन लेना चाहिए।
1: देखिए भाई सुगर देनागत गोठला तो बतान बाकी एक चीज आऊ मैं कहत रहन कि एगो सुगर कन कार्यक्रम भी है। देखिए हमारे खेती पाती करती नहीं ओकर संग संग देखिए हमारे साथ कर कही तो आमदनी कर आय कर कही तो साधन है पशुपालन और पशुपालन में कही तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलत है और यहर देखी पशु स्वास्थ्य पर कही नहीं तो एगो सुगर कन पहल है। तो चटिक बताई तुम के ये विषय में भाई।
0: ये बहुत बढ़िया बात रहा और कहन और शनिवार के दिन हमन खास कर विनो भैया बातचीत करथन। 2019 में ये कार्यक्रम शुरू हो रही NADCP राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिला अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम और एमे जो खुरपका मुहपका रोग कर इला खत्म करे बर प्रयास होते हैं। एकर अलावा ब्रुसेलोसिस एक बीमारी रहे ओला नियंत्रित करे बर और अंततः जिला कहते आखिरकार समाप्त करे बर इला खत्म करे बर सरकार प्रयास करता है। तो एकर अंतर्गत जो है मुख्य रूप से टीकाकरण जो कार्यक्रम है और टीकाकरण के माध्यम से अगर किसान मन पशुपालक मन जागरूक हो जाएं समय समय पर टीकाकरण कराएं तो दोनों बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकता है और ये जो नियंत्रण कार्यक्रम है उसका सफलता निश्चित रूप से हमन के मिल जाएगी।
1: देखिए भाई जरूरी है हमारे अगर पशु रखे ही पशुधन अगर हमारे जगह है तो ये जरूरी है कि उमन कर भी हमन ध्यान दे और रोग नियंत्रण कर जो कार्यक्रम है तेकर से जुड़ के देखिए भाई जानकारी पहले निकाली अपन पहले रोग ला जानी ओकर बाद उपचार जरूर करिए और राउर कहन कि सबले बढ़िया उपाय है कि गिरना नहीं है ओकर ले पहले उठ जाना है और टीकाकरण हर उसने है परसु भैया। देखिए भाई पहले ले राउर तैयार हो जाए और भाई बीमारी झन हो ऐसे प्रयास करी तो वही है देखिए राउर ये जो गोट करत रहे हमारे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम होकर तहत देखिए भाई टीकाकरण होता है और वो टीकाकरण में जितना भी हमारे जानवर हैं जो हमारे पशु पाल के रखे ही टीकाकरण कर सुविधा उपलब्ध है और सरकार प्रयास करत है कि ये टीकाकरण कर सुविधा जम जन जग तक पहुँचे जितना पशु पालक है उमन जग तक पहुँचे और संग संग देखिए देखान में एगो टैग भी लगाते
0: हैं। टैग लगाते हैं से निगरानी हो बढ़िया निगरानी हो
1: बहुत सुगर व्यवस्था है। तो एकस में देखी भाई राउर भी अगर पशु पाले ही और ये विषय में जानकारी नहीं है तो देखिए राउर आसपास जो भी कही तो भाई व्यवस्था है अस्पताल है पशु कर वहाँ जरूर जाई और संपर्क करी और जानकारी जुटाई कि कैसे कैसे टीकाकरण कार्यक्रम में चलता है चाहे जो हमारे पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहती तेमन चलता है चाहे वो कान में जो टैग कर बात कहें तेहर कैसे हो सकेल का है तेकर विस्तार से जानकारी बैठ के सोझ दे गोठिया के और जरूर लाभ ली
0: लेना चाहिए। FMD का टीकाकरण हो प्रत्येक 6 महीना में हमारे नियमित रूप से टीकाकरण खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण पर कराए चाहिए और 2030 तक एक उन्मूलन कर लक्ष्य रखल गई से और एक अलावा जो ब्रुसेलोसिस बीमारी जो हमन बात करत रहें 4 से 8 माह आयु के जो मादा बच्चिया मन है उमन कर टीकाकरण हमन कराथन तो गर्भपात बांझपन और दूध उत्पादन के जो कमी रहे ओला ओकर नुकसान से हमन ला बचाव मिलते। तो एक बारे में जरूर जागरूक रहें। टीकाकरण का रिकॉर्ड आजकल विभाग तैयार करता है डेटा डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करल जाते हैं और राउर जो कहे ना कि यूनिक टैग जो कान में लगाए जाते ओकर माध्यम से ही ये जो डेटा रहल वो पोर्टल में अपलोड करल जाते एकर अलावा रक्त नमूना कर जांच कर जो ओकर रिकॉर्ड भी विभाग तैयार करत है ओला रखत है तो एकर से पशु जो है ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रही और किसान प्रभावित हो ही लाभान्वित हो ही।
1: देखिए राउर गोट करती नहीं परसु भैया तो मन हर करेल कि भाई सुनते च रहते हैं बाकी बेरा हर तो कहेल कि देखिए भाई आने कार्यक्रम भी है हमर जग तो अब बेरा होगी शायद देखिए किसान वाड़ी में जाए कर तो राउर अगर कहता ही तो चली।
0: बहुत जरूरी कार्यक्रम है किसान वाणी हमारे प्रायोजित कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम ला सुनती

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज शनिचर के दिन है बीनू भैया, और राउर पहले बताएं कि हमन पशुपालन के संबंध में पशु मन के बारे में हमन बातचीत करथन, तो वही संबंध में मैं ये कहना चाहत रहन कि बकरी जो उत्पादन है, बकरी पालन जो है, हमार सरगुजा क्षेत्र में भी पूरा देश में जो बकरी पालन है बहुत बढ़िया, किसान भैया बहनी मन एकर पालन करते हैं, बढ़िया लाभ कमाते हैं। और हमर सरगुजा में अगर देखब ना तो ग्रामीण महिला मन बढ़िया बकरी पालन करके घर का काम बुता भी चलते रहल, बकरी पालन भी चलते रहल, और ओकर से बढ़िया फायदा कमाते हैं।
3: देखिए भाई, ये फायदा वाला ही है, और कहब नहीं तो कल बुले पर गए रहन मैं कृषि विज्ञान केंद्र।
2: अच्छा,
3: हाँ, बढ़िया बुलाई ना, दिखाई भी कि भाई देखिए दे कैसे बकरी पालता है, आने आने सब चीज ला दिखाई, लेकिन राउत बकरी पालन कर गोट करत ही नहीं तो बढ़िया दिखाई कि अलग अलग वेरायटी कर रहा है, कैसे सेड बनाए के रखी है, उमन ला चारा कैसे देते हैं, तो भाई बहुत सुघर और बताइन भी कि लाभ कैसे देखी कमाता है, बाजार व्यवस्था का है, अब कहाँ देखे लाभ कमा सकत ही, तो एक अगर जानकारी भी जुटाना है तो राउत जा
2: जा सकत ही सीख सकत ही। और हमन देखथन कि जो एटीएम कार्ड नहीं रहल, वो एटीएम कार्ड से हमन पैसा निकालथन, और पैसा निकाल के कभी भी हमन पैसा निकाल सकत हन, तो हमन देखथन कि ओकर से मतलब कभी भी आपात स्थिति में अगर हमन के पैसा मिलना है तो हमन ला पैसा मिल जाए, तो बकरी पालन भी वही कसे कि अभी हमन के पैसा की जरूरत है तो बकरा ला हमन एक दो ठो बेच दी, ओकर से लाभ कमाई ली, फिर धीरे धीरे जो छोटा वाला है वो बढ़ते रहे। तो हमन गांव में देखे हन, गांव गांव में हमन सड़क किनारे भी जैसे एनएच के किनारे हमन जाथन बिनु भैया, तो देखथन कि कई ठो महिला मन पीछे आगे आगे जात रहते, पीछे पीछे 5 ठो 10 ठो बकरी मन चलत रहते, और बढ़िया उमन के बाद भी ऐसा लगेल कि उमन गोठ भी समझत है और पीछे पीछे भी दौड़त है, तो चरते जाही, और जो ग्रामीण महिला मन है, माता बहिनी मन है, जब अपन धीरे धीरे घर वापस लौटी तो बकरी मन भी अपन घर कति चले जाए, और जहाँ पर वो बनकर जो कोठार बनी से सेड बनी से वहाँ पर जाके बैठ जाए,
3: खुड़े खुड़ाए दे ले जत रहते हैं। और मैं तो देखे हूँ कि संग संग एक दुगो कुकुर भी पोसे रहते हैं, पहरा करे बा,
2: हाँ, पहरा करे
3: बा। हाँ, बाकी देखी राहुल कहे नहीं तो एक तो विशेषता है दे छेरी मनकर, जैसे वो मने दे चरे जात है नहीं, और दुई बूंद बरखा कर पानी टपकिस पीठे, तेकर बद बद बद बद मोढ़ा उठाए के घर।
2: हाँ, सीधे। अच्छा, एक साथ जाते हैं, और बढ़िया दोस्ती यारी ओमन के रहे, तो बकरी पालन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में जब ओमन रथे ना बिनु भैया, तो ओमन ला कुछ रोग लगेल, ओकर बारे में सावधान रहना जरूरी है। वैसे डॉक्टर मन कहते हैं कि बहुत ज्यादा रोग बकरी मन ला नहीं लगेल। एक ठो जो बीमारी हमन पहले भी बात करें, पीपीआर जो बीमारी है, मतलब बकरी प्लेग कहते हैं, और संक्रामक रोग के तरह रूप एला लेते हैं, तेज बुखार रहेल, आंख और नाक में अगर पानी आई, मुंह में छाला हमन के दिखत है, दस्त अगर होता है, सांस लेने में कठिनाई होते है, और ज्यादा कमजोर अगर हमन के बकरा बकरी दिखत है, तो हमन के समझना चाहिए और हमन के पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए कि पीपीआर हो सकत है। तो ये वायरस जनित रोग है, एक सीधा इलाज हमन के नहीं भेटा सकत है, पशु चिकित्सक के सलाह के बाद एंटीबायोटिक दे करके हमन एला नियंत्रित कर सकत है। ओआरएस देना चाहिए, तरल पदार्थ हमन के वो समय देना चाहिए, और बीमार पशु मन ला अलग रखना चाहिए, और पीपीआर कर नियमित रूप से टीकाकरण होते, ओकर से हमन बचाव कर सकत है।
3: देखिए राहुल कहन नहीं भाई, डॉक्टर एक जाए कर जरूरत नहीं होना चाहिए, पहले ले टीकाकरण अगर करवा थी राउर, तो ये बीमारी हर नहीं सहल सकेला, ओकर ले पहले हमारे आउ गोट करत रहें। देखिए बकरी मन भी ये खुरपका मुँहपका हर भी होल, और यहू देखिए दे संक्रामक रोग है जेहर भाई फैले, और बकरी मन तो खुड़ा खुड़ा में रहबे करते हैं, राउर देखिए अगर मुँह और जीभ में दे छाला हो जाता है, और खुर मन कर बीच में अगर घाव घाव दिखत है नहीं, और चटी कही तो लार टपकता है, और ओमन बढ़िया से चल नहीं पाता है नहीं, लंगड़ घच चलता है, तो राउर ला समझना है कि भाई ये हो सके खुरपका मुँहपका नहीं, एकर भी उपाय राउर जिला पहले कहें कि भाई टीकाकरण सब चीज करा है, तो अगर समय ऊपर टीकाकरण करा थी तो चाना सर नगद कम हो जाए, एकस बीमारी मनकर होकर है नहीं, और बाकी राउर तो

0: ये देहन की अगर चटिक लक्षण दिखता है थोड़ा सा भी, तो तुरंत अपन पशु चिकित्सक जग हमला संपर्क करना चाहिए।
1: और घाव अगर दिखत है बिनु भैया, तो पोटास से चाहे हल्का जो एंटीसेप्टिक घोल से घाव ला हमन के धोना चाहिए। उसमें बार बार माटी मत लगे, एक समन के ध्यान करना चाहिए। एक ठो एंटेरोटॉक्सीमिया भी बीमारी होल, ईटी कथे, अचानक मृत्यु होकर एकर से हो जाए, पेट दर्द दिखी, दस्त दिखी, बेचैनी हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, तुरंत हमन के पशु चिकित्सक ला बुलाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में हमन के शुरुआती दौर में उपचार कराना संभव हो जाते हैं, और एकर वार्षिक टीकाकरण होएल, और अचानक हमन के दिखी तो एकर ध्यान रखना चाहिए, वैसे टीकाकरण से बीमारी कर बचाव हो जाएल।
0: एक बीमारी और सुरता आता है मुके परसु भैया, देखी भाई ये दे महू पोसे रहन बढ़िया है दे, तो कहब नहीं कि बढ़िया जे देखी बरखा पानी गिर ही हमर बारी मन में देखी नगद दे घास हो ही, तहां तो हमरे काट काट के चाहे दे छोड़ देती, तब नहीं तो काट काट के लाइन के मुंह कर सामने दे रख देती, मढ़ाई देती, तहां नगद तो हरा चारा ला दे खाए देते, कुटेले रहती तो नहीं, ओकर बाद पोकनी। हाँ, अब ये पोकनी हर होए तो गड़बड़ाए जाए, तो भाई संतुलित चारा हर भी देखी बीमारी का उपाय है। तो भाई पोकनी हर तो ऐसे है कि अगर दुई दिन एक दिन अगर खींचिस तहां राउर छेरी बकरी गईस, तो इला जरूर सुरता करी कि भाई संतुलित चारा होना चाहिए। अब ये घरे बढ़िया है दे नगद हरा चारा होता है, घास मन होता है, तो हेंसुआ धर के अब नगद दे दे काट के लछ लछ नहीं मढ़ाए देना है मुंह कर आगू, तो इला भी सुरता करना ही है भाई। बीमारी हमरे दे कहब नहीं तो परोसा थी, हाँ तो इला भी सुरता करना।
1: बिनु भैया ये जो राउर बात करे ना दस्त कर, ये पेट में कीड़ा भी हो, कृमि रोग हो, ओकर से भी ये बढ़े, और कृमि अगर हो गई से तो चाहे गाय मन कर बात करी, सुअर मन कर बात करी, चाहे बकरी कर बात करी, एमन कर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहे वो घटते जाए। तो अगर वजन लगातार कम होता है, दस्त लगाता है, शरीर कमजोर होते है, और बाल मन हमन के रूखा रूखा दिखता है, तो हमन के समझना चाहिए कि पेट में कीड़ा हो सकता है। तो कृमिनाशक दवा जो है वो कृषि दुकान से भी मिले, कृषि मन कर जो दुकान रहे, लेकर अलावा हमन के अस्पताल से भी भेटाई जाए, डिवर्मिंग कर दवा बोलना पड़े, तो हर 3 से 4 माह में हमन के कृमिनाशक दवा हमन के खिलाना चाहिए, चाहे गोली के रूप में, चाहे घोल के रूप में रहेल, तो ओकर से बढ़िया रहेल, पशु स्वस्थ रहेल। तो एक मुख्य रूप से जो हमन बात करब बिनु भैया, जैसे जो पीपीआर जो बीमारी है, साल में एक बार एक टीकाकरण होएल, एंटेरोटॉक्सीमिया हमन बात करें साल में बछर में एक बार टीकाकरण एकर कराना जरूरी है, एफएमडी जो राउर बताएं 6 माह में एक बार हमन के टीकाकरण कराना पड़े, और गलघोटू जो बीमारी है साल भर में एक बार हमन के मानसून से पहले टीकाकरण कराना चाहिए, और बकरी मन में एक चेचक भी होएल, एक बछर में एक बार हमन के टीकाकरण एकर भी कराना चाहिए।
0: तो ना परसु भैया, देखी भाई बाहरी बढ़िया बरसता है पानी, अब हमरे सुनाता ही ये देख किसान वानी, तो भाई अब मैं कहत रहन कि छेरी बकरी कर और गोट करें, तो ये देखो सुघर कन देखी छेरी बकरी ले जुड़ल गीत लाने हो।
1: अच्छा,
0: तो राउर अगर कहत ही ते हुला सुना,
1: एकदम तुरंत देरी बिना देरी किया हमन सुन लेती, और बहुत बढ़िया गीत हो ही जरूर।
0: तो भोला राम मीन जब उनकर संगता मन गाइन है, डोमकेज गीत लगी तो सुनत।
1: अच्छा, सुन लेती हो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, तो परसु भैया देखिए दे संदेश और संदेश ले पहले दे डोमकच गीत जंगल कर धरी धरी भौला राम मींज और उनकर संगता मन गाय रही। बाकी अब बेरा होगी शायद देखिए दे भाई विशेषज्ञ से गोट बात ला सुने कर। अब देखिए आज हैं दे डॉक्टर जहार सिंह सहायक प्राध्यापक हैं राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर कर। अब देखिए बीजोपचार हमन ला कैसे करना चाहिए ए विषय में राउर गोट बात करे ही तो लगी ये दे भाई सुनत ही ला।
4: हाँ

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक

0: हमर कार्यक्रम में राहुल मनकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जहार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक हैं पादप रोग विज्ञान विभाग कर और राजमुनि देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से हमन बातचीत करब कि जो खरीफ फसल उत्पादन से पहले हमन के बीज उपचार करना चाहिए वो कैसे कैसे हमन कर सकते हैं, कौन कौन सा नया नया तकनीकी है, एक बारे में हमन जानकारी ले। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमन ला बताए कि अभी खरीफ कर तो खैर तैयारी चलत है और बढ़िया उत्पादन हमर सरगुजा संभाग क्षेत्र में हमन लेथन, लेकिन ओकर से पहले राउर मन से हमन सुने हन कि बीजोपचार करना चाहिए और ओकर से बढ़िया फायदा मिले, तो कौन कौन सा बीजोपचार कर तकनीक है, का का फायदा ओकर से मिले?
1: तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बीजोपचार है क्या। तो बीजोपचार एक ऐसा विधि है जिससे हम बीज को सड़ने से या कीड़ों से रोगों के प्रभाव से बचा लेते हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हम टीका लगाते हैं किसी बीमारी के से बचाव के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारा जो बीज रहता है वो कीड़े बीमारियों से बच जाता है। तो उसमें एक सुरक्षित आवरण बन जाता है जिससे बीज अच्छे से और सुरक्षित तरीके से बड़ा होता है और अच्छी पैदावार होती है। तो बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी है, चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की फसल हो। तो उसके लिए क्या क्या करें, उसके लिए दो विधियां अपनाई जाती है, एक रासायनिक विधि बोलते हैं, एक जैविक विधि। रासायनिक विधि में जो बाज़ार में फफूंदनाशी और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत सारे दवाइयां मिलती हैं जिससे हम बीज में एक आवरण बना देते हैं, तो उसके लिए रोगों से बचाने के लिए बाज़ार में बहुत सारा केमिकल फफूंदनाशी आता है जिसमें से प्रमुखतः कार्बेंडाजिम है, थीरम है, केप्टान है, बाविस्टीन है। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम लेते हैं प्रति किलो बीज के दर से और उसको अच्छे से मिला करके और उसमें ये केमिकल अच्छे से मिल जाए, बीज के ऊपर में आवरण बना ले, उसके लिए थोड़ा पानी लेके गुड़ का हल्का छोटा सा टुकड़ा मिला लें तो उसमें बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और दूसरी विधि है रासायनिक विधि जिसमें हम ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बेसिलस बहुत सारे जैविक एजेंट हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा, बेसिलस या स्यूडोमोनास जो भी हमारे पास जैविक एजेंट उपलब्ध हैं उसका 10 ग्राम मात्रा लेते हैं प्रति किलो बीज ग्राम की दर से। तो उसको भी अच्छे से मिलाने के लिए जैसा कि थोड़ा से पानी और गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, वो अच्छे से घोल बना लें और उसमें छिड़क दें ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से चिपक जाए बीजों में, जिससे बीज बहुत सारे प्रमुखतः रोग मिट्टी में रहते हैं तो बीजों में आक्रमण करेंगे तो एक सुरक्षित आवरण बना रहेगा तो हमारा बीज उससे बच जाएगा। तो ये एक सरल शब्दों में बताया गया है। इसमें बीजोपचार करने की भी प्रमुख अलग अलग स्टेप होते हैं जैसे कि गीला बीजोपचार विधि, सूखा बीजोपचार विधि। तो जिसमें उपरोक्त बताए गए जो भी दो विधियां मैंने बताया था, जैविक और रासायनिक विधि, उसमें से हम कोई सा भी विधि लें उसमें से सूखा

0: और गीला विधि में, सूखे विधि में क्या करते हैं, बीज लेते हैं 1 किलोग्राम, और रासायनिक विधि में आ रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी लेंगे, उसमें अच्छे से मिला लेंगे और छायादार जगह में फैला के रख देंगे। उसके बाद सुबह उसको नर्सरी में बुआई कर देते हैं। और गीला विधि में क्या करते हैं, उसमें 1 किलोग्राम बीज है तो उसके लिए हम आधा लीटर पानी लेंगे उसमें, या फिर हम तेल भी ले सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। तो उसमें फिर रासायनिक दवाई को यदि ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम मात्रा डाल के उसमें 1 किलोग्राम बीज को मिला देते हैं, थोड़ा देर डुबा के रखते हैं। फिर उसको ज़्यादा गीला सूख जाए उसका नमी की मात्रा करके पंखे के नीचे या घर में कहीं पे भी साफ जगह में फैला के रख देते हैं। फिर सुबह उसका बुआई कर सकते हैं। और चाहे हम जैविक विधि में अपनाएं, उसमें भी गीला विधि में सिमिलरली केमिकल के जगह में जैविक जीव का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम बीज को एक सुरक्षित आवरण प्रदान करते हैं ताकि स्वस्थ पौधे हों, और स्वस्थ पौधों में अच्छा उत्पादन होता है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया राउर से जानकारी मिली। बीजोपचार कर जो नवा नवा तकनीक है, मुख्य रूप से हमन ला कौन कौन फसल में अपनाना चाहिए, सभी फसल में करना चाहिए, और कितना अंतराल पे करना चाहिए, हर बार करे चाहिए, कौन कौन सा नियम रहे?
0: हाँ, ये किसानों के मन में ये सवाल जरूर आता है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें क्या करना है, जो खरीफ सीजन में चाहे सब्जी वर्गी फसल हो, चाहे खाद्यान्न की फसलें हों, सभी को उपचार करके ही बोना चाहिए। हाँ, मिट्टी में जो रोग और कीड़े लगते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो उसके लिए भी ये 3 स्टेप होते हैं जिसको इंग्लिश में FIR बोलते हैं। पहले फंजीसाइड, जिसको फफूंदनाशी बोलते हैं हिंदी में, इंसेक्टीसाइड जो कीड़ा मारने के लिए दवाई होता है, और लास्ट में होता है राइजोबियम जो कि जैविक कल्चर होता है। तो इसी क्रमबद्ध रूप से उसको उपचारित करना चाहिए, क्योंकि पहले बीमारी आता है फिर कीड़ा आता है। तो इन दोनों के बीच में हम अंतराल रखेंगे ताकि 1 सप्ताह का, ताकि वो अपना काम अच्छे से करे। उसके बाद राइजोबियम है, नहीं तो केमिकल और राइजोबियम एक साथ करेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो वातावरण से नत्रजन रहता है उसको खींच करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो हम दोनों के बीच अंतराल नहीं रहेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो उससे होगा क्या कि एक दूसरे का असर खत्म हो जाएगा, खास करके जो हमारे सूक्ष्म जीव है राइजोबियम बैक्टीरिया उसका।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल कई बार हमर मन में रहेल कि अभी हमन जैविक खेती करत रहन, फिर प्राकृतिक खेती अभी हमन सीखत भी हन, और कई किसान भैया बहनी मन करत भी हैं, तो अगर दोनों विधि है तो उनमें भी बीजोपचार करना चाहिए हमन?
0: हाँ बिल्कुल, अभी जो जैविक विधि है या प्राकृतिक खेती है उसमें हम प्रकृति में जो उपलब्ध जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो लाभकारी हैं, उसका उपयोग करेंगे। उसमें रसायन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जो मैं गुड़ और पानी का मिश्रण बता रहा हूँ, वहाँ पे हल्का सा गोबर का और गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या करें, 200 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से गौमूत्र ले लें, और उसमें 100 ग्राम गोबर ले लें, उसको अच्छे से मिला लें। उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा जो कि सूक्ष्म जीव हैं, जो मिट्टी से ही हम उसको आइसोलेट करके उसको बनाते हैं ताकि जो हानिकारक जीव है उसको ख़त्म कर सके। तो उसके जगह में गौमूत्र और गोबर की मिश्रण में 1 किलोग्राम बीज डाल के थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल देंगे, तो गोबर मिल जाएगा तो उसको पोषक तत्व भी मिल जाएगा, तो बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा, तो वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे शिशु को ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी बीमारी लग जाता है, वैसी बीजू पौधे होते हैं जो नर्सरी में 20-25 दिन तक रहते हैं, उस पौधों में जल्दी बीमारी और कीड़े लगते हैं, नाजुक होते हैं, तो उसको बचा के रखता है उस पीरियड तक। फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, तो थोड़ा बहुत कीड़े बीमारी लगते हैं उससे, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है फिर पौधों में, तो सह सकता है थोड़ा। तो ये अच्छा विधि है उसके
1: डॉक्टर
0: लिए।
1: साहब, कई बार जो पैकेट में हमन ला बीज मिलेल तो हमें कंपनी वाला मन बताते हैं कि बीजोपचार पहले से करल है, तो किसान ला कैसे समझ में आई कि बीज उपचार करल है या ओकर बाद भी किसान कर सकत है?

0: तो जैसे सर्टिफाइड कोई भी कंपनी हो, नामी कंपनी जिससे ऑथेंटिक है, बाजार में सरकार से प्रमाण पत्र मिला है, उस कंपनी से हम बीज खरीदते हैं तो वो सही तरीके से बीज उपचार किया हुआ रहता है, तो उसको बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: अच्छा
0: यदि हम बहुत सारे किसान छोटे गांव में, खासकर हमारे सरगुजा अंचल में जो ट्राइबल बेल्ट है और बहुत दूरस्थ अंचल में है गांव, वहाँ रासायनिक विधि से नहीं करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जो देसी किस्म है उसको उगाते हैं, तो घर में ही उसको आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या उद्यानिकी से सूक्ष्म जीव का मिश्रण ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, उससे उपचारित करके बो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आज बीजोपचार के संबंध में बहुत बढ़िया जानकारी राउत से मिली, बहुत बहुत धन्यवाद करती।
0: धन्यवाद।

0: बहुत बढ़िया बातचीत रहीस और उम्मीद करत हन कि सुनोइया भैया बहनी मतलब बहुत अच्छा लगीस होही बीनु भैया। और देखा आज शनिवार के दिन में हमारे एक कार्यक्रम रहल जोग लिखी, एमे किसान भैया बहनी मन चिट्ठी लिखते हैं, सवाल पूछते हैं और ओकर हमन जवाब देथन। तो आज कर जोग लिखी कर शुरुआत करत हन और ये जो पहला चिट्ठी आई से बतौली क्षेत्र कर लिखिन है, गुलशन है, गंभीर है, मनोज है, सुनील और इनकर संगता मन लिखिन है और ये मन पूछते हैं कि आम हमन कब लगाए सकते हैं, ओकर सही समय कौन सा है।
1: देखिए भाई आप बहुत सही समय पर ये चिट्ठी और पहुंची से हमर जग आम लगा कर देखिए दे सही समय है जून से अगस्त जब बरखा गिरता है नहीं वो समय लगा सकता है। और देखिए भाई लगाना नहीं है, लगाए कर संग संग तीहा जतन भी करना है। गड्ढा कर आकार लगभग एक मीटर, देखिए भाई ये दे एक मीटर ले एक मीटर ले एक मीटर कहीं तो भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज ला एक मीटर रखना है। और सड़ल गोबर बढ़िया डाल के 20 से 25 किलोग्राम ऊपर में दे बढ़िया मिट्टी से मिला के बोला भाई डाल दें। और बीच में हमारे जग देखिए विशेषज्ञ गंगाराम जी आए रहीन और घरे बात ला बताए रहीन तो राउर समय पूछे ही तो देखिए जून अगस्त में लगा सकते ही और बढ़िया दे ओकर देखभाल करी। देखिए एगो आउ चिट्ठी आए भाई ये देखिए का पूछत है तेला तो बताई चटी।
0: दूसर चिट्ठी कर सवाल है कि हमन के आलू लगाना है और कौन कस जलवायु में हमन बढ़िया से आलू लगा सकते हैं और ओकर उन्नत किस्म के नाम ला पूछते हैं। ये धौरपुर से लिख करके भेजिन है जमुना प्रसाद, निरंजन प्रसाद, गुड़िया और सुनीता और उनकर संगता मन लिख करके भेजिन है।
1: देखिए भाई ये कहता है कि हमारे यहाँ कर हिसाब से देखिए भाई आलू लगाना चाहता है तो ये जलवायु पर हिसाब से अनुशंसित किस्म का है तो देखिए राउर लगा सकते ही कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी हिमालयनी है तो ये सब बढ़िया देखिए सरगुजा कर हिसाब कर आलू है राउर एला लगा सकते ही लेकिन समय ऊपर।
0: एक साथ तो आज योग लिखी कार्यक्रम बस इतनी हमला जरूर ये कार्यक्रम में चिट्ठी लिखे और हमन चिट्ठी ला शामिल करथन। और अब देखा बेरा हो गई इसे मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बातचीत कर लेती स्थानीय मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से और हिसाब से सरसों कर मूल्य है 5655 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ कर 2428 रुपये प्रति क्विंटल, तिल कर 6000 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो कर 3250 रुपये प्रति क्विंटल।
1: देखिए भाई मौसम कर बात करी तो बढ़िया बरखा पानी हुई से लेकिन आज कर अधिकतम तापमान रही 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 20 डिग्री सेल्सियस, कल कर अनुमानित है लगभग अधिकतम एतरेच रही 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
0: और एक साथ बिनु भैया किसान वाणी कार्यक्रम बास आज इतरेच। ये रही किसान वाणी कार्यक्रम और अब बातें बात में चौपाल से भी विदा लेकर बेरा हो गई से आन दिन भेटा आप तो फिर बातचीत करब आज चलत ही राम राम।

ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

आज की रात नेक ख्वाहिशात और बेहतरीन तमन्नाओं के साथ मैं मृदुल वर्मा आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।

श्रोताओं, सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में अपनी पसंदीदा फरमाइश भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। वहां प्रतिदिन एक विशेष पोस्ट डाली जाती है। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा गीत, अपना नाम, पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी लिखकर कमेंट करना है। आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों को हम इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ध्यान रखें, यह पोस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाली जाती है और शाम 5 बजे तक प्राप्त होने वाली फरमाइशों को ही कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। तो देर किस बात की, समय का ध्यान रखते हुए अपनी फरमाइश फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें अवश्य भेजें। आपकी पसंद को हम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में जरूर स्थान देंगे। तो चलते हैं पहली फरमाइश की ओर, जो कि आई है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह, पाठक विनोद पुरी और जयपाल यादव की। ग्राम पंचायत परसा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े, यमिया राजवाड़े, आदिया राजवाड़े, अम्भई सिल्लोड, जिला छत्रपति, संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनीप प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा और गोपी वर्मा। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाह है मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति ने। ये हमारे श्रोता हैं कालापारा से। सारसताल सोनगरा, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा और नरेश सिंह। मुंडा टोला डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से प्रथम, प्रफुल्ल खंडा, कैरव खंडा, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार। ग्राम कसकेला पोस्ट सलका अघिना जनपद भैया थान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से शेष कुमार सिंह, ज्योति सिंह, सिजल सिंह। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग और टूनी। जिला नांदेड़, येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। गोगावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। सुखराम सिंह मरावी, ये हमारे श्रोता हैं जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से, ग्राम पंचायत खोंगला, उदयपुर सरगुजा से इस गीत को सुनना चाहते हैं जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू। टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर।

छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में शोले फिल्म का गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

की है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने, गांव फरांसी, जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से, गगनदीप थानदी, तृप्ता कुमारी थानदी, डॉक्टर प्रियंका थानदी, डॉक्टर प्रशांत थानदी, डॉक्टर प्रियम थानदी, बेबी वामिका और वाणी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से इस गीत को सुनना चाहा है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और मधुकर येले ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बूढ़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव, मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गिंदू भाई, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमडाड़े, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से इस गीत की फरमाइश की है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने, तामसा रोड हडगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़ और प्राणिता गायकवाड़, सादुल शहर राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह और मंगला बेन शाह, कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय। तो चलिए आप सभी के फरमाइश पर सुनते हैं परदेश फिल्म का एक गीत सोनू निगम की आवाज़ में, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है नदीम और श्रवण ने।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। खुर्जा उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, हंस राज हंस, श्वेता और शिट्टी ने। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। रडोगरी पीपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सुनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल।

कमल और नफीसा प्रवीण बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बासरा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बासरा, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तारिया, धाकड़ भोला वाक्तारिया, प्रवीण वाक्तारिया, रियांश वाक्तारिया और प्रतीक वाक्तारिया। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में, बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है जतिन और ललित का।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए पेश है फिल्म कृष का ये गीत कुणाल गांजावाला की आवाज में। लिखा है विजय अकेला ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। डेरा पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत की फरमाइश की है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। MLB रोड ग्वालियर से हमारे श्रोता साथी हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, SK पप्पी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बीबी चाहत। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे श्रोता साथी हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। और इसी के साथ ही लीजिए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है ग्राम लसुड़िया पाटा तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी की नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाणकर निर्मला नवाणकर विशाल नवाणकर और सोपान तैड़े की पुराना तालाब डुमराव से इस गीत को सुनना चाहा है वली उल्लाह अंसारी असमा नास अंसारी और शबनम बानो जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नास चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार बिट्टू कुमार अर्चना कुमारी कल्पना कुमारी मुन्नी कुमारी चांदनी कुमारी नंदनी कुमारी रायपुर से हमारे श्रोता साथी हैं विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर मजनू काटिला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ बनियापारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डुडवानी और इनका पूरा परिवार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया और मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी और जगमोहन प्रजापति इन सब ने सुनना चाहा है फिल्म दिलवाले का गीत अमृता मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाज़ में बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत निर्देशन हैं प्रीतम का

कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का अंतिम गीत है सोहम चक्रवर्ती की आवाज में लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से। शब्द रचना है सईद कादरी की, संगीत से सजाया है प्रीतम ने। इस गीत को सुनना चाहा है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अलिक रहमान, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता साथी हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। अकोट महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल, सविता पाटिल और बालू पाटिल। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। रावर करनाल से विनोद लखनपाल, ग्राम धरवई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। तो आइए आप सबके फरमाइश पर सुनते हैं लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म का ये गीत।

सोहम चक्रवर्ती की आवाज़ में इस खूबसूरत के से गीत के साथ ही अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा को सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस

0: विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित

प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
3: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
2: तो चांद को ही देखिए ना।
3: मगर वो सांस नहीं लेता।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में रेफ्यूजी फिल्म के गीत, लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। इसी के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम

0: इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह

0: मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और

0: समाचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपकी सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के।

0: पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
0: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में। लेकिन बात कौन सी रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जब फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल।
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोफर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड, जैसे इंग्लिश वर्ड जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, चैलेंज किया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को।

0: हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उस पर ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए।
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: या ये जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है। हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, और जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए इसका रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो

0: उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है
1: जी।
0: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कॉम्पोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
0: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत

0: गीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन।

0: अस्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को

सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।